आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, एक महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। एक महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। एक महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन है, कैसे कैसे आचरणों में अपने को इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना। देखो घटनाएं होती रहती ना, सुनते मतलब राक्षस है ना, राक्षस पूरा राक्षस है। मार ऐसे मारा, ऐसे मारा ऐसे, और अपनी वासना की, तो राक्षस है कि नहीं। एक मनुष्य जब धर्म से भ्रष्ट हो गया तो बिना सींग और बिना बड़े बड़े दांतों वाला राक्षस बन गया कि नहीं? बोले उसने ऐसा किया और मार डाला, ये क्या है, ये क्या है? तुम्हारा शरीर जैसे तुम्हें प्रिय है वैसे सबको प्रिय है, तुम केवल अपनी वासना के लिए कर डाला ना, तो ये राक्षस भाव आचरण अपवित्र तो देखो कहां तक पहुंचा दिया। एक आचरण ने उसकी तो हिंसा कर ही दी और अपनी भी हिंसा कर दी, अपना भी जीवन बर्बाद कर दिया, या तो आजीवन कारावास या तो फांसी की सजा। मतलब कैसे कैसे, तो हमें लगता है कि हर मनुष्य को ये जो लाभ मिला है मनुष्य देह का, ये भगवान का आश्रय लेकर, सत शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, नाम जप, ये जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो ये पशुता पिंड नहीं छोड़ेगी, ये कोई ना कोई ऐसी गलती करा दे। मान लो नहीं ओपन हुआ तो आप अंदर अंदर जलेंगे। अगर भयानक पाप बन गया तो आप सह नहीं पाओगे, आपका मन आपको दंड देना शुरू कर देगा, फिर लगेगा यार अपना ही शरीर नष्ट कर ले, ऐसे ऐसे विचार आने लगते। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और कोई उसका दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतारता है। ये दंड है, हर समय भयभीत रहना, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुए, जिनका कोई दंड नहीं मिला। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्रेम, ये बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है, ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे तोड़ो और खा लो, बहुत ऊंचाई पे है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा, नाम जप करना होगा, दूसरों का उपकार करना हो। ये देह मिली है, दूसरों का माता पिता परिवार ये तो अपने है ही है, गली चलते अगर किसी पशु पक्षी की भी सेवा करनी पड़े तो हम उसके लिए भी राजी रहे, तब जाकर हमारा हृदय पवित्र होगा। फिर हमको भगवान गुरुदेव की कृपा से ये जो तत्व बोध है, ये तत्व बोध है, अकर्ता स्थिति अभोक्ता स्थिति, ये तत्व बोध है, ये तब होता है जाकर के। अब ऐसे पढ़ लिख करके थोड़ी होता है, पढ़ लिख के नहीं होता, वो होता है देखो। इसीलिए उपनिषद में लिखा है नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाले को तत्वबोध नहीं होता, बहुत प्रवचन सुनने वाले को तत्वबोध नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को तत्वबोध नहीं होता। बोले होता किसको है? बोले आत्मा जिसे वरण कर लेती है, आत्मस्वरूप गुरुदेव भगवान, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव भगवान कृपा, उनकी आज्ञा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया और उनकी कृपा से सब ज्ञान विज्ञान आ जाता। समझ रहे बच्चा? बार बार हमको मन परास्त करता है, बार बार हमसे गलतियां होती हैं, तो अब हमको छोड़ना नहीं, वो छोड़ो कि पहले होता था अब नहीं होता, अब फिर पकड़ो, हम कह रहे ना पकड़ो, राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। भगवान पिता की तरह है, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं, फिर चलो गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चल दिए, अब शुरू करो नाम जप, ठीक है, अंदर ही अंदर अंदर अंदर। हाँ ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ, अच्छा आदमी भी देखो गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं, नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे है। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है, तो भजन चलेगा। तृणादपि सुनी चेन तरोरियुषय सुनना अमानिना मान देन, तो कीर्तनीय सदा हरि। सदा भजन कीर्तन बनता रहेगा यदि अपने को सबसे छोटा समझोगे, दूसरों को मान दोगे, जो कष्ट आवे राधा राधा सह गए तो आगे निकल जाओगे। और अपने लोग थोड़ा अहंकारी जीव है ना, तो जहां थोड़ा भजन साधन अच्छे चले तो लगता है ये गंदा, हमारी जो अच्छाई थी ना वो भी चली जाती है। इसलिए हमको सबसे नीचे, मतलब नीचे को मतलब छोटा बन के, सब में भगवान है, हमारे ऊपर गुरु कृपा है तो भजन हो रहा है, जब इनके ऊपर कृपा हो जाए ये भी भजन करेंगे। अगर गलत आहार, गलत पेय पदार्थ, गलत चेष्टा, तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो हम अपने दोस्तों को रोके ना कि उसी में मिल जाए। अगर नहीं रोक सकते तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देखेंगे, हम ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए सत्संगी को, ऐसा थोड़े होना चाहिए कि हम चार बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई, ये इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे चार दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे, ऐसा करेगा ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना, तुमको हिम्मत रखना गलत आचरणों में नहीं। यार ये मांस आदि जानते हो बच्चा, दूसरे का शरीर है यार। नहीं बच्चा इतना तो हमें बताओ, दूसरे का शरीर है बच्चा, ये जैसे अपना शरीर ऐसे उनके हाथ पैर। हर आप एक मुर्गे को ऐसे मारो, ऐसे वो देखो भागेगा। अब आपकी एक अंगुली के प्रहार को वो बचने के लिए भागेगा। आप किसी भी जीव को देखो, आप उसको उबाल के ऐसे खा, क्या बन जाए, क्या कौन सा तगड़ा मांस मछली। दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता। जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता, जिम यमोग रघुपत कर बाना, ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? हाँ, हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित, तो कोई जोड़ नहीं था। आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए, भगवान की सेवा, चराचर की सेवा, नाम जप, पवित्र आचरण, तो अभी दिव्यता आ जाए। अभी यहां अपने इंद्रियों की गुलामी से मुक्त नहीं है, मन की गुलामी से मुक्त नहीं है। देखो ना, संत को देखकर मन कभी नहीं चला कि हम भी संत बनकर भगवान की प्राप्ति करें। मुर्गा मुर्गी खाते देखकर मन चला। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर के चरित्र पढ़ के कभी नहीं सोचा कि राष्ट्र के लिए कभी मुझे भी अवसर मिले कि हम अपने प्राणों को बलिदान करें। हम ऐसे निकृष्ट लोगों को देखकर क्यों मन चलाएं? हम उच्च लोगों को देखकर मन चलाएं कि काश हमको भी कभी राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करने का अवसर मिले। कि बंदे मातरम फांसी में चढ़ गए, कभी हमको भी राष्ट्र के लिए छाती में गोली खाने को मिले। ये तो बातें, मतलब अब दूसरे का गला काट के पशु पक्षियों का उबाल के खाने का मन चले तो हमें तो लगता है बच्चा धिक्कारा करो ऐसे मन को, डांटा करो। जो नाम प्रिय हो आपको, अधिक से अधिक जितने नाम प्रिय हो, हम तो कह रहे हैं विष्णु शास्त्र नाम याद कर लियो, गोपाल शास्त्र नाम याद कर लियो, बार बार उनको दोहराओ। किसी भी तरह हमारा मन भगवान से जुड़ने लगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। आप ये छोड़ो कि मुझे एक, वो पहुंच जाओगे आप एक में। अभी जो राम कृष्ण हरि शिव जो नाम आपको प्रिय लगे वो जपो और सबकी आराधना करो। धीरे धीरे जब मन पवित्र होता है तब एकाकार होता है। अब हम प्रारंभ से तो नहीं बनेगा, वो एकाकार स्थिति बाद में आई। जब हम भी शुरुआत में थे ना, स्कूल में पढ़ते थे तो काफी चालीसा लेकर के देवी जी के मंदिर में जाते थे। गांव में शंकर जी और देवी जी के मंदिर होते हैं तो सुबह नहा लेते थे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कई चालीसा लेके जाते और आधा घंटे एक घंटे जो बनता हो चालीसा का पाठ करके प्रणाम करके स्कूल जाते। उसी का फल हुआ कि देखो भगवान के मार्ग में पूरा जी। तो शुरुआत सबकी ऐसे होती है, शिव अम्बा जी गणेश जी और ऐसे विविध भगवत स्तोत्रों का गायन, तो उसी से आगे बढ़ते। तो आप शुरुआत में हो चलो बढ़िया, उसमें परेशान नहीं है। जैसे अभी कल की चर्चा में था, प्रचेता गणों ने 10,000 वर्ष तक जब रुद्र भगवान के उपदिष्ट स्तोत्र का गायन किया तो उनका अंतःकरण पवित्र हुआ, वो आत्मबोध को प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि का दर्शन भी हुआ और आत्मबोध को भी प्राप्त हुए। तो हमें ये चाहिए कि हमें साधन करना है। जो लोग संतों का संग नहीं करते, गुरुजनों के कृपा पात्र नहीं होते, वो इन्हीं सब बाहरी बात, तो अंदर तो समझ नहीं पाए श्लोक का भाव। बाहरी बातें जो हमें करना चाहिए वो छोड़ दिए और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं और बातें ज्ञान की कर रहे हैं, अनुभूति कुछ नहीं, वो एकदम पाखंड हो जाता है। एक बात ये समझना है कि बिना क्रिया के एक मिनट भी कोई शरीर नहीं रह सकता। आप ऐसे हाथ पैर बांध दो और बैठा दो ऐसे, बोले अब क्रिया हो रही अंदर, देखो शरीर अगर क्रिया नहीं कर रहा तो अंदर क्रिया हो रही है, तीन शरीर है, अब सूक्ष्म शरीर से क्रिया हो रही है, यार कम मुझे छोड़े कम में, ये क्रिया तो हो रही है। और सुषुप्ति में भी क्रिया होती, सोने में भी, अगर सुषुप्ति में क्रिया ना होती तो बोले यार कच्ची नींद जगा दिया हमें, मतलब नींद की भी एक क्रिया है जो पक्की होगी जाके, नहीं बोले आज खूब यार मस्ती से सोए। तो हम ये देखते हैं बिना क्रिया के कुछ है नहीं, और हम क्रियाओं में फंस गए हैं गलत क्रिया करके। अब हमको सही क्रिया करके गलत क्रिया का प्रायश्चित करना है, और जब सही क्रिया हुई तो उसका कर्ता, जब निर्मल हृदय होगा ना उसका कर्ता और भोक्ता भाव गया, अब वो अपने स्वरूप को आ गया। जैसे एक कांटा लग जाए तो हमें कांटा और कांटे की आकृति जैसा ही यंत्र चाहिए, और उससे जब हम निकाल लेंगे तो वो गड़ा हुआ कांटा भी फेंक दिया और जिससे निकाला था उसको भी फेंक दिया। तो शरीर राग में हम फंसकर असद आचरण कर रहे हैं, गंदे फंसने वाले। अब हम शरीर से सद आचरण कराएंगे, असद आचरण का त्याग किया, फिर सद आचरण का कर्ता भाव त्याग हो गया, अब वो बचा अपने स्वरूप में। नहीं तो बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्म बोध संपन्न हुए, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो, कितने तपस्वी, कितने नियमनिष्ठ, कितने व्रत वाले, तब वो बोल रहे हैं हम ब्रह्मास्मि। ऐसे थोड़ी ब्रह्म स्वरूप में कि हाँ, तभी गोस्वामी जी ने लिखा है ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। गोस्वामी जी ने लिखा है ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो, स्थिति कहाँ है अपराध वाली। तो जब तक तपस्या नहीं, साधना नहीं, पवित्र आचरण नहीं, तब तक हम शरीर राग से मुक्त नहीं हो सकते। बातें चाहे जितनी बनाई जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, जब भूख प्यास लगेगी, जब शौच लघु शंका लगेगी, सर्दी गर्मी लगेगी, मान अपमान विपत्ति सुख, इनसे परे होता है आत्मस्वरूप, और हम अभी इसी में है। ईमानदारी से देखो इसी में है कि नहीं, तो हमको चलना पड़ेगा ककहरा से। पीएचडी की बातें करें, आता ककहरा ना हो तो हालत क्या होगी, नहीं होगी। तो ये है पीएचडी की बात बच्चा, और स्थिति है ककहरा में नहीं, परमार्थ का ककहरा नहीं आता, और बात हम पीएचडी की करें तो सफल नहीं होंगे। तो उससे फिर लगता है कि आप सही स्थिति में आओ ना, वास्तविक आपका ऐसा ही स्वरूप है। तो केवल वाणी से बोलने से नहीं होगा, रात दिन भजन करने से होगा, रात दिन शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, पवित्रता, व्रत, नियम, तपस्या, तब जाके ब्रह्म बोध होता है। ऐसे मनमानी भोजन करें, मनमानी भोग भोग ले, संसार में विचरण करें और ब्रह्म बोध हो जाए तो सबको ना हो जाए। फिर अब विचार करो तो नाम जप करो पहली बात तो, और भगवान के जो महान भागवत ज्ञानी जन हुए उनके वचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और चरित्र पवित्र रखो। आज का सत्संग जो सुनाओ तो प्रारंभ यहीं से हुआ था कि श्री जी के चरणों का आश्रय, निरंतर नाम जप, आचरण पवित्र, संयम युक्त, तीन बातें कही थी। ये बात कोई भी स्वीकार कर लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप, और तुम्हारा चरित्र आचरण पवित्र हो, बस फिर आप निकल जाओगे। भले हम माला दो माला चार माला नाम जप कर ले, आश्रय भोगों का है, रुपया पैसा संसार का, भगवान का आश्रय नहीं, भोगों का आश्रय, और बहुत ही मनचला स्वभाव है, जो देखा उसी में फिसल गए। और दो चार माला भाई नाम जप कर लिया तो इससे तो बात नहीं बनेगी। नाम जप हुआ, घड़े में पानी डालना और अंदर है छेद, तो तुम्हारा घड़ा कभी भरेगा ही नहीं, कभी तुम्हें आनंद का अनुभव ही नहीं होगा। तो आप कहोगे भजन करते हैं 20 साल हो गए, नहीं, सही ढंग से चलो। अगर छेद नीचे से घड़े के बंद कर दो, पांच बूंद डालोगे, फिर पांच बूंद डालोगे तो एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आचरण पवित्र। आप सबसे प्रार्थना है अपनी तरफ से, देखो मानव जीवन बड़ा कीमती है, शराब पीना, मांस खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदे विचारों से देखना या आचरण करना, ये सर्वनाश की जड़ है। ये सुधार कर लियो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने के आचरण करो, चार दिन है, इसी में कमाई कर लो, भूल मत करो। हमें जाना है यहां से, हम सबको यहां से जाना है। हम कह रहे स्वस्थ शरीर ऐसे चलते चलते दिल फेल हो जाता है, एक मिनट में कब हम यहां से चले जाएं और फिर हमको कमाई का अवसर नहीं मिलेगा। ये मानव देह में ही हम कमाई कर सकते हैं, अच्छी या बुरी, मनुष्य जन्म में नवीन कर्म कर सकते हैं। तो हम दूसरों को सुख दें, नाम जप करें, ये मांस खाना दूसरों को कष्ट दे करके, या शराब पीना, ये आसुरी प्रवृत्ति, या माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना, ये सर्वनाश करने वाला है, ये महापाप के अंतर्गत आता है। तो हमारे जहां तक शब्द पहुंचे, प्रार्थना है कि आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, अच्छे विचार वाले बनो, स्वस्थ रहो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की सेवा में आओ, दूसरों को शोषण करके नष्ट करने वाले मत बनो। ये मानव जीवन बहुत कीमती है, दुर्लभो मानुषो देव, इसका लाभ ले लो। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा कृष्ण कृष्ण, क्या पैसा लगता है? और ये आपको सब कुछ प्रदान कर देगा, लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देंगे। देखो, अगर किसी को लगता हो क्या राधा राधा राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते रहे जैसे लोगों को, तो क्या हम हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। भगवान ने सृष्टि रचना के समय किसी का सहयोग नहीं लिया, नहीं, एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन गए। और उन भगवान का अगर आप नाम जप करोगे तो अनंत ब्रह्मांडों का कार्य जिनसे चल रहा है वो आपका भी चला रहे, पर आप जान नहीं पा रहे, अहंकार के कारण लगता है मैं कर रहा हूं। वही बल है आप में, आप में जो बल है बुद्धि, वो उन्हीं का बल बुद्धि है। इसलिए गलत आचरणों का त्याग करके सब भाई नाम जप करो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे आचरण करो। इसके लिए मनुष्य जन्म, ये डिप्रेशन हाय हाय, ये दुनिया की नारकी दुर्गतियां, ये पाने के लिए मानव जीवन नहीं, ये आनंद के लिए। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब समस्या हो गई कि आनंद की खोज हम बाहर करने लगे, वो आनंद है अंदर, और हम बाहर व्यक्ति वस्तु स्थान में खोज करने लगे, वही पाप करने लगे। आनंद की खोज के लिए हमारा पाप शुरू हो गया, इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, और पाप बनता हमारी दूर। वो आनंद है कहां? हृदय में। आप देखो नाम जप करके देखो, हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते, अद्भुत आनंद, कुछ नहीं चाह रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसलिए गलत आचरण मत करो, नाम जप करो। भाई हमारे पास आने का तो मतलब यही है, साधु समागम का मतलब क्या है? आपका मंगल होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए, और लाभ मिलेगा नाम जप से, अच्छे आचरण से, जंतुर बंधाने से नहीं, छूछा राख से नहीं, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, इसी से मंगल होगा। और सब मायाकृत नाटक है, और सब मायाकृत नाटक, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम, सत्य सत्य सत्य भगवान भगवान का नाम, और सब माया नाटक है। खूब नाम जप करो, कितने सुंदर सुंदर पदार्थ है भगवान को भूख लगा के पाओ, अच्छे से जीवो। मनुष्य जीवन जीना तो आए, ये अच्छा जीवन है। दूसरे को कष्ट देकर डिप्रेशन में बैठे जल रहे, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, उद्विग्नता, परेशानियां, नहीं, सब परेशानी मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। मानव देह का मतलब है मुस्कुराहट, आनंद, स्वस्थता। पर यह तभी होगी जब धर्म में चलोगे, भगवान का भजन करोगे। जब हनुमान जी को देखा सब जिन लोगों ने, जब सीता जी खोज ले तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीने से रामचंद्र कर काजा, सबको पता चल गया काम हो गया। क्यों? मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अब मुख प्रसन्न क्यों नहीं सबके, तन में तेज क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का कार्य नहीं कर रहे, भोगों का कार्य कर रहे। रामचंद्र कर कीने से काजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अभी आप देखो संयम से चलो, भजन करो, पवित्र हार, तो अभी आपका लुभावना चेहरा भी होने लगेगा, नहीं डरावना चेहरा लगता है, नहीं, जब भोगों में रत्ती, पापाचरण, तो देख के डर लगता है कि पता नहीं भगवान, नहीं तो भगवान का चिंतन करने वाले में भगवान का रूप आने लगता है, गुण आने लगता है, प्रभाव आने। तो हम तो हैं तो सब भगवान के बच्चे नहीं है, तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पापों को क्षमा करें और आगे से हम ये खान पान सुधारें, कोई गलती ना करें, तो इसी जन्म में भगवान के हम कृपा पात्र बन जाएंगे, यही प्रार्थना करनी थी। तू जो
1: है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी,

0: सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
2: श्रोतागण प्रणाम, सुप्रभात। इस सुबह सवेरे के बेला में हम लेके आ गए बनी राउर आपन कार्यक्रम, आपन दे आपन देखभाल। जिनमें हमनी के जाने निशन अपना स्वास्थ्य के और बेहतर बनावे खातिर बहुत सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। तो चलिए श्री गणेश कह जाओ आज के प्रोग्राम के। आज जानल जाओ सबसे पहले सर्दी बुखार और खांसी से निजात पावे की कुछ घरेलू नुस्खा। पीपल, अडूसा के पत्ता और पोस्त डोडा, ये सब के काढ़ा बना के पिए से खांसी, श्वास तथा कफ ज्वर के इलाज होला। संभालू के पत्ता के क्वाथ और पीपल के चूर्ण मिला के पिए से कफ ज्वर के नाश होला। दूध गर्म करके वही में थोड़ा सा नमक और गुड़ डाल के बच्चा के पिलावे से जुकाम और कफ रोग मिटेला। नागरबेल के पत्ता पर एरंड के तेल लगा के और वही के थोड़ा सा गर्म करके छोटा बच्चा के छाती पर रख के गर्म कपड़ा से हल्का सेक करे से बच्चा के छाती में जमा कफ पिघल के निकल जाला। हींग के शराब में खरल करके सुखा ली और के दो रत्ती की मात्रा में लेके मक्खन के साथ खाए से खांसी, श्वास और दूषित कफ विकार ठीक हो जाला। ताजा रस या अर्क कफ, सर्दी एवं मस्तिष्क दर्द में अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों अब जानल जाओ छोटा मोटा परेशानी खातिर 20 घरेलू नुस्खा। कांच या कंकर खाए में आवे पर इसबगोल के भूसी गरम दूध के साथ 3 समय सेवन करी। घाव ना पाके एक हतरा गरम मलाई जितना गरम सहन कर सकी बांधी। तुतलापन दूर करे खातिर रात के सोते से 5 मिनट पूर्व 2 ग्राम भूनल फिटकरी मुंह में रखी। बच्चा के पेट दर्द होके पर अदरक के रस 5 ग्राम तुलसी पत्र घोट के औटा के बच्चा के 3 बार पिलाई। बच्चा के सेहत खातिर तुलसी के 4 पत्ता पीस के 50 ग्राम पानी में मिलाई आ सुबह पिलाई। अमाशय के दर्द में तुलसी पत्र के चाय के तरह औट के सुबह शाम लेहल लाभदायक है। सीना में जलन होके तो पाव भर ठंडा जल में नींबू निचोड़ के सेवन करी। ज्यादा पी लिहल होके तो 6 माशा फिटकरी के पानी या दूध में मिला के पिला देवे से या दूध सेब के रस पिला देवे से ओके नशा खत्म हो जाला। अरहर के पत्ता के रस पिलावे से अफीम के नशा कम हो जाला। आधा चटाक अरहर दाल पानी में उबाल के ओके पानी पिलावे से

दर्द के नशा कम हो जाला। केला हजम करे खातिर दो छोटी इलायची काफी होला। आम ज्यादा खा लिहल होके ता हजम करे खातिर थोड़ा सा नमक के सेवन करी। मुंह से बदबू आवे पर मोटा अनार के छिलका पानी में उबाल के कुल्ला करी। मछली के कांटा यदि गला में फंस जाए तो केला खाई। हिचकी आवे पर पुदीना के पत्ता या नींबू चूस ली। वजन घटावे खातिर गरम जल में शहद व नींबू मिला के सेवन करी। कान दांत दर्द खांसी व अपचन में जीरा व हींग एक से आधा मात्रा में सेवन करी। जख्म पर पड़े वाला कीड़ा के नाश करे खातिर हींग पाउडर बुरक दी। दांत दर्द खातिर हींग रुई के फाहा में लपेट के दर्द की जगह पर रखी। शीत ज्वर में ककड़ी खा के छाछ सेवन करी। शराब के बेहोशी में ककड़ी के सेवन कराई तो लाभ मिली। तो दोस्त लोग अब हम बतावे जात मानी ब्यूटी खातिर कुछ घरेलू नुस्खा। कई बार हम साधारण से बीमारी में घबरा जानी, लेकिन अगर हमनी के थोड़ा भी घरेलू नुस्खा के बारे में पता होके तो आसानी से तुरंत इलाज कइल जा सकेला। तो ऐसे में दादी नानी के खजाना से हम लेके आयल बानी ऐसे कुछ लाजवाब सरल और सहज नुस्खा जेके अपना के रउआ भी पा सकतनी निरोगी काया। त्वचा के कील मुहासा और दाग धब्बा के कैसे दूर रख सकतनी एकरा खातिर आसान से घरेलू उपाय 25 मिलीलीटर ग्लिसरीन और 25 मिलीलीटर शुद्ध गुलाब जल में 5 ग्राम सल्फर पाउडर मिलाएं। आई लेप के रात में चेहरा के दाग धब्बा मुहासा पर लगा के छोड़ दी। सवेरे पानी से चेहरा धोई। ई लेप से एक हफ्ता में रवा एकने के प्रॉब्लम से निजात पा सके। बेहतरीन रिजल्ट पावे खातिर सप्ताह में 3 बार एके लगाई। संतरा के 20 ग्राम सूखा छिलका 5 ग्राम सूखल नीम के पत्ता ली और एके पीस के चूर्ण बना ली। ई चूर्ण में 5 ग्राम चूर्ण चंदन चूर्ण और आटा मिलाई। ई मिश्रण में 5 मिलीलीटर बादाम तेल और इतना ही मात्रा में तिल के तेल मिलाई। अब ई उपटन के रात भर चेहरा पर लगाए रखी और सवेरे पानी से धो दी। ई उपटन के हफ्ता में 3 से 4 बार लगाई। गुलाब पत्ती सेना नीम तुलसी और कासनी के 3 ग्राम पत्ती के उबाली। आई मिश्रण के छान के एमे चीनी मिलाई। आई मिश्रण के हर रात सूते से पहले पी तो ऐसे रवा 15 दिन में ही फर्क दिखाई देवे लगी।

0: सौंदर्य के साथ ही शहतूत के घरेलू नुस्खा। शहतूत एगो स्वादिष्ट मीठा नाजुक नर्म फल है। इमे अनेक ऐसा लाभदायक गुण होला जौन कई बीमारी में वरदान साबित हो सकेला। शहतूत में पाए जाए वाला रेजवर्टेरोल के बारे में मानल जाला कि ई शरीर में फैलल प्रदूषण के साफ करके संक्रमित चीज के बाहर निकालेला। अगर रउआ झुरी से परेशान बानी तो अब चिंता करे के कौनो बात नहीं खे। एक खातिर शहतूत के जूस पी राउर चेहरा चमकदार और ताजा हो जाई। शहतूत में एंटी एज यानी उम्र के रोके वाला गुण होला। साथ ही ई त्वचा के जवानी की तरह जवां बना देवेला और ई झुरी के चेहरा से गायब कर देला। शहतूत बाल में भी भूरापन लावेला काहे कि एमे 89% ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावल जाला। शहतूत में रेजवर्टेरोल पावल जाला जौन स्वास्थ्य के लाभ पहुंचावेला। इतना ही ना, शहतूत में और भी कई गुण पावल जाला जैसे एक नियमित प्रयोग से आँख के गड़बड़ी लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से बचल जा सकेला। तो दोस्त लोग आज खातिर बस इतना ही काहे कि अब दीपाली ली है रउआ से जाए के विदा। तो रखी रउआ आपन सेहत के ख्याल आजमाई ई सब नुस्खा के आ हमरा के दी जाए के इजाजत। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
3: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
3: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
3: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
3: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
3: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: ठक ठक
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

नखा जैसी राक्षसी, कामांध स्त्री, मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वो भाई, पिता, पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है, अपने मन को रोक नहीं सकती। श्री राम ने लक्ष्मण को शूर्पणखा के कान और नाक काट देने का इंगित किया। लक्ष्मण ने स्वामी के आदेश का पालन किया। वो विलाप करती अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाकर उनके पौरुष को ललकारती है। शूर्पणखा के आहत होने का हाल सुनकर झुंड के झुंड राक्षस दौड़ पड़े। राक्षसों की सेना निकट आई देख श्री राम ने लक्ष्मण के साथ सीता जी को पर्वत कंदरा में भेजकर अपने धनुष पर वाण चढ़ाया। ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जैसे मतवाले हाथियों को आता देख सिंह उन्हें ताक रहा हो। श्री राम को देख राक्षसों की सेना चकित थकित रह गई। ऐसा सुंदर रूप उन्होंने कभी देखा न था, उन पर वाण कैसे छोड़े। तब युद्ध न करने के उद्देश्य से खर दूषण ने श्री राम से उनकी स्त्री की मांग की।

अपनी बहन शूर्पनखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह टुकड़ों में काट देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध दिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे। फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर, देह, हाथ पैर तथा रक्त से पट गया, किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पनखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची।

शूर्पणखा से खर दूषण समेत राक्षसी सेना के विध्वंस का वर्णन सुन रावण के अंग प्रत्यंग जल उठे। बालक दिखने वाले दशरथ पुत्रों की वीरता और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री के होने का समाचार जान रावण सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी किसी योनि में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उसके सेवकों का भी सामना कर सके। यदि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया है तो वो हठपूर्वक उनसे वैर मोल लेगा और स्वयं प्रभु के वाणों से मारा जाकर मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा निश्चय कर वो रथ पर अकेला सवार होकर वहां चला जहां सागर तट पर मारीच रहता था।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8669 73।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: दी।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, राशन कार्ड को लेकर चलाया जा रहा है अभियान, पुलिस दीदी अभिया ब्रिगेड का हुआ गठन, शराब कारोबारियों में हुई गोलीबारी को लेकर 2 आरोपी गिरफ्तार, शराब के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और 1 महीने में हुई 801 लोगों की गिरफ्तारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। नए राशन कार्ड निर्माण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर अनुमान

किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का त्वरित सत्यापन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सत्यापन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी कर पात्र लाभुकों का राशन कार्ड शीघ्र निर्गत कराएं, ताकि कोई भी योग्य परिवार सरकार की खाद्य सुरक्षा एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मिशन 13 अगस्त के तहत अभियान को पूरी गंभीरता के साथ संचालित किया जा रहा है और लक्ष्य की 100% प्राप्ति के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभियान के माध्यम से अधिक पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने महिला सुरक्षा और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस दीदी टीम यानी अभया ब्रिगेड का गठन किया है। यह टीम स्कूलों कॉलेजों में जाकर छात्राओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाएगी और जागरूक करेगी, साथ ही ऑपरेशन विधि पालक के तहत मंचलों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए अलग अलग तरीके से पुलिस अभियान चला रही है और महिलाओं तथा बच्चियों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही साइबर अपराध और अन्य आपराधिक गतिविधियों के प्रति भी महिलाओं को अलर्ट किया जा रहा है। जादवपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर दो गुटों के बीच हुए हिंसक विवाद, झड़प और गोलीबारी को लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार टेंगराही गांव के पास गंडक नदी के किनारे पहले दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, इसके बाद फायरिंग की घटना भी सामने आई। पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन और जादवपुर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में घटना स्थल की घेराबंदी की गई। पुलिस के वाहन को आता देखकर मौके पर मौजूद लोग भागने लगे। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपी झाड़ियों और आसपास के जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पप्पू यादव और अखिलेश यादव के रूप में हुई है। दोनों भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों ने अवैध शराब की खरीद बिक्री को लेकर कन्हैया यादव और अमरजीत यादव के गुटों के बीच विवाद की बात बताई है। गिरफ्तार आरोपियों के निशानदेही पर घटनास्थल के पास से झाड़ियों से 22 लीटर देशी शराब भी बरामद किया गया है। वहीं FSL की टीम ने भी घटनास्थल पर जांच पड़ताल किया है। जिंदा कारतूस और एक खोखा भी जब्त किया गया है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोटिया थाना की पुलिस ने 59 लीटर देशी शराब के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जमुनाहा हाई स्कूल के पास छापेमारी की और यहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी 2 मोटरसाइकिल और 59 लीटर शराब भी जब्त की गई है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दिव्यांशु कुमार गोस्वामी, जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के माधोमठ का रहने वाला है, और मुमताज अंसारी, यह कटिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और साथ ही तीसरा छोटू यादव, यह परशुराम यादव का पुत्र है और विजयपुर के बंधौरा का निवासी है। तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास कांड में फरार चल रहे 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों पर बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 355/26 दर्ज किया गया था और हत्या के प्रयास में इन्हें आरोपी बनाते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसमें ये फरार चल रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर इलाके में छापेमारी की, जहां से भूपेंद्र पांडे, धर्मेंद्र पांडे, ये दोनों बमोनिया टोली के निवासी हैं, और तीसरा दीपक तिवारी, यह बच्चा तिवारी का पुत्र है और शंकरपुर का रहने वाला है। सभी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत के ही रहने वाले हैं। सभी को आज गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जिले में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाते हुए 1 महीने के अंदर अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में शामिल 801 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बताया जा रहा है कि इसमें हत्याकांड में हुई गिरफ्तारी, हत्या के प्रयास में हुई गिरफ्तारी और अन्य आपराधिक घटनाओं तथा कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर हुई गिरफ्तारियां शामिल है। साथ ही इसमें डकैती, पॉक्सो एक्ट और बलात्कार के मामले में भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति कांड के भी मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं रोड जाम और पुलिस पर हमला करने वाले लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान कई शराब तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 1000 लीटर शराब भी जब्त किया गया है। नगर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अजय कुमार और दूसरा सुनील कुमार, ये दोनों
हरखुआ वार्ड नंबर 23 के निवासी हैं। इन आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला नगर थाने में दर्ज था और ये लोग फरार चल रहे थे। तभी पुलिस ने नगर थाना कांड संख्या 692/26 में इन्हें गिरफ्तार कर

0: हिरासत में भेज दिया। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दो मोटरसाइकिल सवार शराब तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 303 लीटर शराब मिली है, जिसमें एक आरोपी अजय कुमार राम नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है और दूसरा विकास कुमार यह माझागढ़ थाना क्षेत्र का निवासी है। इधर उत्पाद पुलिस ने बेतिया के रहने वाले एक शराब तस्कर गोविंद शाह को भी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी भी मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राशन कार्ड को लेकर चलाया जा रहा है अभियान। पुलिस दीदी अभिया ब्रिगेड का हुआ गठन। शराब कारोबारियों में हुई गोलीबारी को लेकर दो आरोपी गिरफ्तार। शराब के साथ तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और एक महीने में हुई 801 लोगों की गिरफ्तारी। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
12: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
11: आज की कड़ी बहुत खास है, क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस, यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
12: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण, ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
11: सच कहूं से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं, और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
12: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
11: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
12: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
11: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मानसिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
12: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो, जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
11: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
12: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं, या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
11: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्यों? अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
12: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
11: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
12: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
11: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता, बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
12: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है। बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
11: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
12: हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गाँव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैर बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है तो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
11: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
12: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
11: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
12: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
11: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
12: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
11: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
12: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
11: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
12: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल। अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
11: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
12: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
11: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
12: श्रोताओं, याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
11: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में, सेहत सही लाभ कई में, एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
13: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
14: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
13: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
14: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
15: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
16: सुनिए,
17: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
16: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
17: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
16: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710 3992 या 9765065।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 6112 पे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
6: बोलबम, हर हर महा

0: एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में

0: परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव

0: के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
1: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
2: Working to strengthen each other's
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था तो मैं वापस गया अपने कमरे में। जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
5: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
6: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
13: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी
14: जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: पार्टी तो कभी से शुरू हुई है
6: पर भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है।

0: चला चला चला चला चला चला चला
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
8: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
9: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
8: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
9: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
8: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
9: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
8: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
9: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
8: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
9: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित बिहार के शिवनारायणपुर समेत देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर बिहार सरकार से आपत्ति जताई। प्रवर्तन निदेशालय ने बांका में अवैध बालू खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में एक निजी कंपनी के बिहार, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित बिहार के शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन समेत देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन भागलपुर साहेबगंज रेलखंड पर स्थित है। हरियाणा के जिंद में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिवनारायणपुर स्टेशन के आधुनिकी करण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति बिहारवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर बिहार सरकार से आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों का स्थानांतरण अभियान को प्रभावित कर सकता है। मंत्रालय ने कहा कि 11 मार्च 2026 से ऐसे अधिकारियों के तबादले पर रोक के निर्देश हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में नामित शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों का दूसरे चरण से पहले स्थानांतरण जनगणना कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गौरतलब है कि बिहार की जनगणना निदेशक रंजिता ने भी जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर आपत्ति जताई थी। बिहार विधान परिषद के 8 सदस्यों ने प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सदस्यों ने किसी भी संरचनात्मक बदलाव से पहले सभी हितधारकों से व्यापक विमर्श करने और विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार विधानमंडल के आगामी मॉनसून सत्र में नया उच्च शिक्षा विधेयक लाने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार सरकारी डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालयों से अलग कर सीधे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा, जबकि स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का संचालन एक स्वायत्त निकाय के माध्यम से होगा। राज्य सरकार ने दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज में 4 बाईपास सड़कों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार इन परियोजनाओं पर 288 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। तकनीकी स्वीकृति के बाद जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग के अनुसार ये परियोजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं का हिस्सा है। राज्य सरकार ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर में वृद्धि लागू कर दी है। परिवहन विभाग ने मंत्रिमंडल के फैसले की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 1 लाख रुपए तक की कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए 9% और 1 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 10% कर लिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार दोपहिया वाहनों पर कर की दर में 1% की वृद्धि की गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम को 15 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव जय सिंह ने समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को 31 जुलाई तक सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में किसानों को बीज से बाजार तक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग और गूगल के बीच सहयोग की दिशा में पहल की गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नई दिल्ली में गूगल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर डिजिटल तकनीक, फार्मर आईडी और तकनीक आधारित कृषि सेवाओं पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि विभाग गूगल के तकनीकी मॉडल का अध्ययन कर आवश्यकताओं के अनुरूप आगे की कार्य योजना तैयार करेगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर और रोजगार प्रदाता बनाना सरकार की प्राथमिकता है। हाजीपुर में जीविका की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और ई कॉमर्स के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कार्यशाला में 250 से अधिक जीविका दीदियों को विशेषज्ञों ने ऑनलाइन विपणन, डिजिटल मार्केटिंग और उत्पाद सूचीकरण का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के तहत पटना जॉयराइड का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे स्टेट हैंगर पटना में आयोजित होगा। वहीं मुख्यमंत्री आज पटना में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में विश्वविद्यालय के सफल विद्यार्थियों को उपाधियां और टॉपर छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बांका जिले में अवैध बालू खनन से जुड़े लगभग 131 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में बिहार, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना और बांका में छापेमारी हुई है। ईडी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 के बीच बड़े पैमाने पर अवैध खनन किए जाने के आरोपों की जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान कई डिजिटल दस्तावेज जब्त किए गए। जांच एक निजी कंपनी और उससे जुड़े लोगों की भूमिका पर केंद्रित है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और बारिश का पूर्वानुमान है।
1: राज्य के पश्चिमी एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
0: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। 6 विषयों के लिए 40,000 से अधिक आवेदनों में से स्क्रीनिंग के बाद 8,034 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। साक्षात्कार 20 जुलाई से पटना के विभिन्न केंद्रों पर शुरू होंगे। 6 विषयों में कुल 2,532 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को कल शाम तबीयत बिगड़ने पर पटना के IGIMS में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अनुसार उनका रक्तचाप अस्थिर हो गया था, जिसके बाद उन्हें एहतियातन कार्डियोलॉजी विभाग में ले जाकर आवश्यक जांच की गई। लगभग 3 घंटे के बाद उनकी स्थिति सामान्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुजफ्फरपुर के मुशरी प्रखंड में नाला निर्माण के दौरान PNG पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से गैस रिसाव की घटना में 7 छात्राएं और 2 शिक्षिकाएं बेहोश हो गईं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर किया गया। प्रशासन के अनुसार सभी की स्थिति अब स्थिर है। तकनीकी टीम ने पाइपलाइन की मरम्मत कर गैस रिसाव पर नियंत्रण पा लिया है। गया की MP-MLA अदालत ने वर्ष 2013 के चर्चित जदयू नेता सुमिरक यादव हत्याकांड में राजद के पूर्व विधायक रंजीत यादव सहित 3 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में पूर्व विधायक कुंती देवी को पहले ही दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई जा चुकी है। राज्य की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने साइबर ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पटना से गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने और आपत्तिजनक पोस्ट के मामलों में 1 मई से 14 जुलाई तक 102 मामले दर्ज कर 130 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इन सभी मामलों में 40 हथियार जब्त किए गए हैं। मधुबनी मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक सब इंस्पेक्टर और चौकीदार से लूटपाट का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने सब इंस्पेक्टर रूपक कुमार पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में बाघ ने एक बछड़े का शिकार कर लिया। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खगड़िया सदर प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी दीपक कुमार भारद्वाज को लखीसराय में शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। नालंदा जिले के बेना थाना क्षेत्र में बिहार शरीफ बख्तियारपुर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दंपति की मौत हो गई। वहीं सहरसा में हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। अरवल में 20 जुलाई को जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। समाहरणालय परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेले में 20 से 25 नियोजक भाग लेंगे और लगभग 900 रिक्त पदों पर नियुक्ति के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शिक्षक तबादले के लिए आवेदन 29 से 3 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया, पहले चरण में 5 अगस्त तक आवेदन का मौका। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, मतदाता सूची से नाम हटाने से खत्म नहीं होती है नागरिकता। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं। प्रभात खबर की सुर्खी है, जरूरत के हिसाब से बिहार बनाएगा अपना स्वदेशी AI मॉडल CM। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, हरियाणा के जिंद से दौड़ी देश की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन। आज अखबार लिखता है, पढ़ाई में और आगे निकला बिहार, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का खुलासा, सूबे का स्कोर 507 से बढ़कर हुआ 564.8। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित बिहार के शिवनारायणपुर समेत देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर बिहार सरकार से आपत्ति जताई। प्रवर्तन निदेशालय ने बांका में अवैध बालू खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में एक निजी कंपनी के बिहार, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित

0: अधि सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
11: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-91 8029-94-91 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले

0: प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
1: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम सालू कुमारी।
1: कहाँ से बात कर रही हैं सालू जी?
2: टोला से।
1: जागीरी टोला से?
2: श्रीसिया बिरती टोला।
1: अच्छा, श्रीसिया बिरती टोला। ठीक, कैसे हैं सालू जी?
2: अच्छा, आप बताइए।
1: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या करती हैं सालू जी आप?
2: पढ़ाई करती हूँ।
1: किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
2: नाइन्थ क्लास में आ गए।
1: नाइन्थ क्लास में आ गई हैं आप। और पढ़ाई कैसा चल रहा है आपका?
2: अच्छा चल रहा
1: है। ये बढ़िया है। आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल किए हैं सालू जी?
2: पहले भी कर चुकी हूँ।
1: अच्छा, पहले भी बात हुई है। तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बरेंद्र कुमार प्रसाद
1: जी। क्या करते हैं पापा जी आपके?
2: बिजनेस मैन है।
1: और आपका क्या लक्ष्य है, आगे क्या करना है पढ़ाई करके, कुछ सोचा है आपने?
2: जी, आगे पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज में जाना है।
1: सिविल सर्विसेज में जाना है, चलिए बढ़िया है। तो शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम आपके साथ।
2: यस मैम।
1: जी, लिया जाए पहला प्रश्न।
2: यस मैम।
1: ओके,

0: तो सालू जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ।
0: रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन डी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी क्या था?
0: विटामिन बी।
1: और ऑप्शन सी?
0: विटामिन डी।
1: दोनों विटामिन डी?
0: ऑप्शन बी विटामिन बी है।
1: हाँ।
0: और ऑप्शन सी विटामिन डी है।
1: अच्छा। विटामिन ए।
0: हाँ?
1: विटामिन ए।
0: विटामिन ए?
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है, लॉक कीजिए।
0: चलिए, तो चलिए सालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए को लॉक करते हैं और आपको बताएं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है। चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी कंप्यूटर, सी रेडियो। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी कंप्यूटर।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कंप्यूटर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, तो सालू जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगणमन, ऑप्शन बी वंदे मातरम और ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं? चलिए, तो सालू जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आज से आपका चौथा प्रश्न ये है। भारतीय संविधान के जनक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर विधान चंद्र राय और ऑप्शन सी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन सी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: तो चलिए सालू जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका पांचवा प्रश्न ये है। जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है?
1: 30 जनवरी।
0: हाँ। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: श्योर है आप?
1: श्योर नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके पांचों प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: तो मैम नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
9: जी मैं बिमल कुमारी बोल रही हूँ, लाइन बाजार से।
0: जी कैसे हैं बिमल जी।
9: ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो
9: हेलो।
0: हाँ
9: जी बोलिए।
0: मैंने की पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी।
9: पढ़ाई अभी तो बंद है।
0: अच्छा, तो अभी क्या हो रहा था।
9: अभी कुछ नहीं, सिलाई चलाती हूँ तब तक फ्री टाइम में।
0: क्या चलाती हूँ।
9: सिलाई कर लेती हूँ फ्री टाइम में।
0: अच्छा, सिलाई भी करती हैं। तब कुछ सिल लेती हैं।
9: हाँ लेडीज, स्वामी लेडीज।
0: लेडीज मतलब सारी चीज सिल लेती हैं।
9: हाँ।
0: तो आपको लेडीज टेलर बोल सकते हैं।
9: हाँ ना, मैं अपना सिल कर पहन लेते हैं लोग, दूसरे का सिल देते हैं।
0: चलिए अच्छी बात है, करना चाहिए, वो भी जरूरी है।
9: हाँ
0: तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए।
9: जी मैम।
0: जी मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
9: मम्मी का नाम प्रभाती देवी है, पापा जी के नाम श्री रामा जी प्रसाद है।
0: जी, तो लिया जाए ना पहला प्रश्न।
9: जी मैम।
0: जी,

0: तो विमल जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम और ऑप्शन सी विजयी विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम।
0: क्यों है?
1: हाँ
0: जी। और आपके बगल में कोई बच्चा है?
1: हाँ,
0: बीच बीच में आवाज आ रही है थोड़ा।
1: बेबी, छोटा सा बेबी, एक मंथ का, वो पास ही में है।
0: चलिए कोई नहीं, तो लॉक करें आपका आंसर।
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं।
1: जी
0: जी। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन ए।
0: क्यों है?
1: जी मैम।
0: जी, लॉक करो।
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, बिहार केसरी के नाम से किस महान पुरुष को जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर, सी श्री कृष्ण सिंह। तो आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्री कृष्ण सिंह।
0: क्यों है?
1: सी।
0: लॉक कर दूं? तो क्या कहती हैं, लॉक करूं कि कोई और ऑप्शन दीजिएगा?
1: कर दीजिए मैम, देखते हैं।
0: कर दिए। चलिए, तो विमल जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी कंप्यूटर, सी रेडियो। आपका समय शुरू होता है। क्यों है?
1: हाँ,
0: लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी कंप्यूटर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही है। तो तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, तो पांचवा प्रश्न आपसे ये है विमल जी, तीस जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी और
1: महात्मा गांधी।
0: जी, तो रहे आप?
1: जी मैम।
0: तो लॉक कर दो?
1: जी।
0: चलिए, तो चलिए विमल जी, आपके पांचों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 8 मार्च, बी 28 फरवरी, और सी 22 मार्च. आपका समय
1: 8 मार्च.
0: क्लियर है?
1: जी मैम.
0: लॉक कर दो.
1: जी जनरल नॉलेज.
0: ओके तो चलिए विमल जी आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 8 मार्च को लॉक करते हैं. और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है. तो तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैम.
0: जी तो सातवां प्रश्न आपसे ये है निम्न के किस जिले में 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है. निम्न के किस जिले में 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है. ऑप्शन ए छपरा, बी बेतिया, सी सिवान. आपका समय शुरू होता है अब.

0: कंफर्म नहीं है मैम, फिर भी छपरा लॉक कर दीजिए।
1: छपरा कर दें
0: जी,
1: श्योर है
0: लॉक? श्योर तो नहीं है, मिस्टेक हो रहा है, लेकिन लॉक कर दीजिए, देखते याद नहीं आ रहा तो क्या करें।
1: चलिए कोई नहीं, तो आपके सातों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए छपरा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातों प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा सिवान।
0: ओके मैम,
1: ओके। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
11: हेलो,
12: नमस्ते मैम।
11: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
12: ये मैं अभिजीत कुमार पचुरुखी से बात कर रहा हूँ।
11: पचुरुखी से?
12: जी,
11: सिवान पचुरुखी।
12: जी जी
11: जी। और अभिजीत नाम पड़ेगा आपका?
12: जी।
11: क्या करते हैं अभिजीत जी?
12: बारहवीं
11: बारहवीं में।
12: जी
11: जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
12: बढ़िया चल रही है।
11: अच्छी बात है, तो आगे क्या करना है, पढ़ के कुछ सोचा आपने? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
12: गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है।
11: अच्छा, अभी शुरू नहीं किया है?
12: नहीं।
11: ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप?
12: जी जी
11: जी। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अभिजीत जी।
12: मम्मी जी का नाम उषा देवी और पिताजी का नाम दिनेश ठाकुर।
11: क्या करते हैं पापा जी आपके?
12: फार्मर हैं।
11: तो शुरू किया जाए आज का प्रश्न आपके साथ।
12: जी
11: जी

0: तो अभिजीत जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 17 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह जनवरी
0: कर है
1: जी।
0: चलिए तो अभिजीत जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 जनवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मोतिहारी, बी मुजफ्फरपुर, सी बेतिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी फिक्स कीजिए।
0: बेतिया
1: जी।
0: प्योर है
1: जी।
0: लॉक कर दो
1: जी।
0: तो विजय जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बेतिया लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, तीस जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तीस जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: महात्मा गांधी।
0: श्योर है
1: जी?
0: लॉक कर दो
1: जी।
0: जी। तो चलिए अभिजीत जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, बिहार राज्य को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? बिहार राज्य को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 14। आपका समय शुरू होता है अब।
1: नौ फिक्स कीजिए।
0: आपके बगल में कोई है?
1: मेरा बात कर रहा था गया हूँ।
0: हाँ?
1: गया उधर बात कर रहे थे। नौ फिक्स कीजिए।
0: श्योर है आप?
1: जी।
0: चलिए तो चलिए अभिजीत जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 9 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्मदिन कब मनाया जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 16 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब। 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 16 फरवरी।
1: 13 फरवरी फिक्स कीजिए।
0: श्योर है
1: जी?
0: तो चलिए अभिजीत जी आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 13 फरवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, बिहार राज्य के निम्न जिलों में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन ए नालंदा, बी औरंगाबाद और सी पटना। आपका समय श्रोता है अब।
1: औरंगाबाद फिक्स कीजिए।
0: क्यों है?
1: क्यों नहीं
0: है? लॉक कर दो
1: जी।
0: जी तो चलिए अभिजीत जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी औरंगाबाद को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा पटना।
1: ठीक है ना।
0: ओके हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
9: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921, 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
10: हाँ हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: जी मैडम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना।
10: रंजीत कुमार
0: जी। कैसे हैं रंजीत जी?
10: ठीक है मैम, आपने बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या करते हैं रंजीत जी आप?
10: अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं।
0: किस क्लास की पढ़ाई चल रही है आपकी?
10: अभी ग्रेजुएशन हो गई है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी चल रही है।
0: चलिए, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: मेरे पिताजी का नाम है श्री जग महतो और मेरी माता जी का नाम है श्रीमती इंदु देवी।
0: जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं पहले प्रश्न के लिए?
10: जी
0: जी। तो रंजीत जी, आपसे रंजीत नाम बताया ना आपने?
10: जी जी
0: जी।

0: पहला प्रश्न ये है, बिहार केसरी के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर और सी श्री कृष्ण सिंह। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्म कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 14 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन क्या क्या बोली है?
0: ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 14 फरवरी।
1: 13 फरवरी को फिक्स कीजिए।
0: क्यों है?
1: जोर तो नहीं है लेकिन फिक्स कीजिए इसी को।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 13 फरवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: जी, आज का आपका तीसरा प्रश्न ये है, बिहार राज्य के निम्न जिलों में से दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन ए नालंदा, बी पटना, सी कटिहार। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मतलब क्या कर रहे हैं कि दो लोकसभा,
0: बिहार राज्य के निम्न जिलों में से दो लोकसभा वाला जिला निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है?
1: जी
0: जी,
1: पटना, नालंदा और क्या ऑप्शन दिए हैं?
0: कटिहार।
1: कटिहार को फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है, फिक्स कीजिए।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर कटिहार को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा पटना।
1: ठीक है।
0: ओके, हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैं विमल कुमारी बोल रही हूँ।
0: जी कैसे हैं विमल जी?
2: ठीक है, आप कैसी हैं मैम?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो विमल जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
2: जी मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है।
0: चलिए, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी के नाम श्रीमती प्रभावती देवी और पापा जी के नाम ब्रह्मा जी प्रसाद है।
0: तो विमल जी, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी मैम।
0: जी,

0: तो विमल जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? बिहार राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? ऑप्शन ए पटना, बी मुंगेर, सी तिरहुत। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी
0: तिरहुत।
1: जी
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तिरहुत को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 10 मार्च, बी 8 मार्च और सी
1: 8 मार्च को।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दो?
1: जी मैम।
0: चलिए, तो विमल जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर 8 मार्च को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरवन, बी नीलगिरी और सी मानस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी डी
0: नीलगिरी।
1: नीलगिरी रिजर्व।
0: श्योर है आप?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दो?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए विमल जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी नीलगिरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है स्टीफन हॉकिंग, बी है अल्बर्ट आइंस्टीन और सी है जॉन व्हीलर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी लॉक कीजिए मैम।
0: ऑप्शन बी लॉक करें?
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: अल्बर्ट आइंस्टीन।
1: कौन दीजिए, तो कंफर्म नहीं तो क्या करें।
0: चलिए, तो आपके चलिए चौथे प्रश्न के उत्तर को लॉक कर रहे हैं।
1: जी,
0: अल्बर्ट आइंस्टीन को। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जॉन व्हीलर।
1: ओके
0: ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
8: हेलो
0: जी, बहुत बहुत आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
8: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
8: संदीप सिंह
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं संदीप जी?
8: सिवान आनर से।
0: सिवान आनर से
8: जी।
0: जी क्या करते हैं आप संदीप जी?
8: पढ़ाई करता हूँ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर
0: जी। पढ़ाई कैसे चल रही है?
8: बढ़िया चल रही है मैम।
0: जी बढ़िया। इससे पहले हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं आप?
8: जी जी।
0: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
8: मम्मी का नाम उर्मिला देवी और पिताजी का नाम गणेश सिंह
0: जी। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे आज का।
8: जी
0: जी,

0: आज का पहला प्रश्न आपसे ये है संदीप जी, भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? ऑप्शन ए गोविंद सागर, बी हीराकुंड जलाशय और सी नागार्जुन सागर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गोविंद सागर फिक्स कीजिए।
0: श्योर है
1: जी?
0: ओके तो लॉक करें।
1: जी
0: जी तो संदीप जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, पूरे वर्ष में एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्थानीय पवन, बी मौसमी पवन और सी सनातन पवन यानी अस्थाई पवन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी
0: अस्थाई पवन।
1: जी।
0: क्यों है?
1: नहीं।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए संदीप जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अस्थाई पवन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, लौह पुरुष की उपाधि किस महापुरुष को दी गई थी? लौह पुरुष की उपाधि किस महापुरुष को दी गई थी? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए
0: सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: जी।
0: जो है आप?
1: जी जी।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए संदीप जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी मुजफ्फरपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पूर्वी चंपारण फिक्स कीजिए।
0: श्योर है? ओके तो चलिए संदीप जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर।
1: ओके
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। हेलो
2: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप इनके कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैं सोनू दूर बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं सोनू जी?
2: मैं हूँ मैम, अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: बढ़िया चल रही है मैम।
0: जी अच्छी बात है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
2: मम्मी का नाम कालिंदा देवी और पिताजी का नाम संतोष दुबे।
0: जी लिया जाए पहला प्रश्न आपका।
2: जी जी
0: जी

0: तो पहला प्रश्न आपसे ये है सुनील जी आज का, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा और सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी
0: लेक करीबा।
1: जी
0: श्योर है आप? चलिए तो सुनो जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लेक करीबा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा लेक वोल्टा।
1: लेक वोल्टा,
0: वोल्टा हाँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971602।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80029-94921 80029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
12: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
12: रुपेश कुमार जादवपुर से।
0: एक बार और बताइए नाम।
13: रुपेश कुमार, रुपेश कुमार,
0: रुपेश कुमार यादवपुर से।
13: हाँ
0: जी, क्या करते हैं रुपेश जी?
13: पढ़ाई करते हैं
0: जी। किस क्लास में पढ़ते हैं?
13: ट्वेल्थ में।
0: ट्वेल्थ में। पढ़ाई कैसी चल रही है?
13: अच्छा

0: बी 12 जनवरी सी 14 जनवरी आपका सेमेस्टर होता है अब.
1: बारह जनवरी को चेक करेगी.
0: श्योर है आप?
1: हम फॉर्म तो नहीं है लेकिन इसी को चेक करेगी.
0: ओके तो चलिए रुपेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 जनवरी को लॉक करते हैं. और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है. तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है? ऑप्शन ए सारण, बी दरभंगा, सी भागलपुर. आपका समय शुरू हो गया अब.
1: भागलपुर. कंफर्म नहीं है लेकिन इसी को ठीक करिए.
0: ओके चलिए तो चलिए रुपेश जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भागलपुर को लॉक करते हैं. और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है. तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? जी. आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक लेक नासेर, बी लेक करीबा और सी लेक वोल्टा. आपका समय शुरू होता है अब.
1: ऑप्शन बी को फिक्स करिए.
0: ऑप्शन
1: बी.
0: बी लेक करीबा. जी लॉक कर दो.
1: कर दीजिए लेकिन कंफर्म तो नहीं है, थोड़ा डाउट में है. ऑप्शन बी और सी के.
0: तो कौन सा लॉक करे? कंफर्म करिए. नहीं है तो
1: बी को ही कीजिए.
0: बी को ही करे लेक करीबा.
1: नहीं सी को
0: लेक वोल्टा.
1: हाँ
0: श्योर है इसके लिए?
1: हाँ कीजिए.
0: ओके चलिए तो चलिए रुपेश जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लेक वोल्टा को लॉक करते हैं. और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल सही है. तैयार है चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ.
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर, बी गोविंद सागर, सी नागार्जुन सागर. आपका समय शुरू होता है अब.
1: गोविंद सागर को फिक्स कीजिए.
0: इसमें श्योर है कि ये भी लग के सारे
1: इसी को फिक्स.
0: ओके तो चलिए रुपेश जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गोविंद सागर को लॉक करते हैं. और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है. तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए? जी. पांचवा प्रश्न आपसे ये है कला के क्षेत्र में किस महापुरुष को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कला के क्षेत्र में किस महापुरुष को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, बी किरण बेदी, सी मदर टेरेसा. आपका समय शुरू होता है अब.
1: लता मंगेशकर को फिक्स
0: करिए. श्योर है?
1: हाँ उन्हीं को कीजिए.
0: ओके तो चलिए रुपेश जी आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर लता मंगेशकर को लॉक करते हैं. और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर भी सही है. तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए?
1: हाँ
0: चलिए. आपसे आपका छठा प्रश्न ये है तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? तिरहुत प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी मुजफ्फरपुर. आपका समय शुरू होता है अब.
1: मुजफ्फरपुर को फिक्स करिए.

0: हेलो
1: कर दूं?
0: हाँ
1: ओके। तो चलिए रुपेश जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर मुजफ्फरपुर को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
0: हाँ।
1: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी किरण बेदी, सी अमृत प्रीतम। आपका समय शुरू होता है अब।
0: ऑप्शन बी को पिक कीजिए, किरण बेदी को।
1: श्योर है?
0: हाँ कीजिए।
1: ओके तो चलिए रुपेश जी, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी किरण बेदी को लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप आठवें प्रश्न के लिए?
0: हाँ।
1: ओके, आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, बी अल्बर्ट आइंस्टीन।
0: क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। ब्लैक होल
1: शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, बी अल्बर्ट आइंस्टीन और सी जॉन व्हीलर। आपका समय शुरू होता है अब।
0: जॉन व्हीलर को फिक्स कीजिए।
1: श्योर है?
0: प्योर तो नहीं है, मतलब लक के भरोसे है।
1: लक के भरोसे आठवें प्रश्न तक पहुंच गया है।
0: अरे तो मतलब लक के भरोसे सब थोड़ी है, मतलब उसमें से कुछ तो बताए भी है, इसमें लक के भरोसे दो भी बताएंगे।
1: ओके नहीं, आप बोल रहे हैं कि प्योर नहीं है इसलिए बोले।
0: अरे तो मतलब हमको ऐसा लग रहा है, मतलब इतना मतलब हम जानकार थोड़ी है कि हमको सब पता ही होगा।
1: ये तो बिल्कुल सही है कि किसी को सब पता नहीं होता है।
0: हाँ तो वही जो मतलब हमको लग रहा है कि मतलब यही सही होगा, तो मतलब हमारे मतलब हमको जो लग रहा है हम बोल रहे हैं।
1: तो हम भी वही बोले हैं कि लग के भरोसे आप आठवें प्रश्न तक आ गए, हम कुछ गलत नहीं बोले हैं। गलत ठीक है?
0: ठीक है
1: जी। तो लॉक कर दे आपके उत्तर को, जॉन व्हीलर को।
0: हाँ
1: चलिए, तो चलिए आपके आठवें प्रश्न का उत्तर जॉन व्हीलर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके आठवें प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप नौवे प्रश्न के लिए?
0: हाँ।
1: आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है,
0: नौवा है मैम
1: जी, नौवा प्रश्न है जी। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल। आपका समय शुरू होता है अब।
0: तमिलनाडु को फिक्स कीजिए।
1: श्योर है?
0: हाँ कीजिए।
1: ओके तो चलिए रुपेश जी, आपके नौवे प्रश्न का उत्तर तमिलनाडु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके नौवे प्रश्न का उत्तर जो है तमिलनाडु गलत है। सही उत्तर होगा केरल। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट पे कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87-894-18-744।
12: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
13: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
12: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
13: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
14: हेलो।
15: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
15: थैंक यू मैम
14: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
15: नाम सलोनी कुमारी बंजारी प्रमस्थान गोपालगंज से।
14: जी कैसी हैं सलोनी जी?
15: ठीक हूँ
14: जी। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
15: अच्छी चल रही है।
14: किस क्लास में पढ़ती हैं?
15: बीए फाइनल ईयर।
14: फाइनल ईयर चल रहा है। चलिए तो आप तैयार हैं आज के प्रश्न के लिए?
15: हाँ।
14: नाम बता दीजिए अपने मम्मी पापा का।
15: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा का नाम है कुंदन लाल।
14: जी लिया जाए पहला प्रश्न।
15: हाँ लीजिए।
14: ओके

0: तो सलोनी जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा, सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन दीजिएगा फिर से।
0: ऑप्शन ए लेक नासेर, बी लेक करीबा और सी लेक वोल्टा।
1: ए लगाइए।
0: लेक नासेर।
1: हाँ।
0: योर है?
1: तो नहीं है।
0: चलिए तो सलोनी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर लेक नासेर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा लेक वोल्टा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट, ये बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी आपका नाम?
0: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना।
2: मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है।
0: जी कहाँ से बात कर रही है अनुराधा जी?
2: थाने से बोल रहा।
0: जी कैसे हैं?
2: हम ठीक हैं, आप बताइए।
0: मेरी बढ़िया। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी अनुराधा जी?
2: फर्स्ट ईयर में है।
0: अभी चल रही है?
2: जी।
0: पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: ठीक ही चल रही है, घर से ही करते हैं।
0: जी जी चलिए बढ़िया है। तो आप लोग क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया तो तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी एक बार किए थे।
0: जी आज के लिए आप रेडी हैं?
2: जी।
0: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी पापा का नाम श्री प्रभुनाथ गुप्ता है और मम्मी का नाम श्रीमती वरुण शिवला देवी।
0: जी पापा जी क्या करते हैं आपके?
2: काम करते हैं किसी के अंदर में।
0: अच्छा अच्छा, तो पहला प्रश्न ले आपसे। शुरू करें पहला प्रश्न। जी
2: जी ना।

0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: टॉयलेट मैन को उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? टॉयलेट मैन को उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? ऑप्शन ए दशरथ मांझी, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और ऑप्शन सी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा।
0: टॉयलेट मैन के उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है?
1: दशरथ मांझी।
0: दशरथ मांझी का
1: जी जी।
0: तो लाला जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दशरथ मांझी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक।
1: खाली
0: पूछना प्रश्न कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: रुपेश कुमार जादवपुर से।
2: रुपेश?
1: हाँ
2: जी। कैसे हैं रुपेश जी?
1: ठीक है।
2: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
1: अभी 12th क्लास का चल रहा है।
2: जी 12th का पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
1: ठीक चल रहा है
2: जी। तो अभी क्या कर रहे थे आप?
1: कुछ नहीं, कॉली लगा रहे थे।
2: ओके, और पढ़ाई करके आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
1: अभी तो नहीं सोचे हैं।
2: अभी नहीं सोचे हैं। चलिए, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप?
1: हाँ किए हैं।
2: किए हैं, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: मेरे माता जी का नाम श्रीमती सुमिता देवी और पिताजी का नाम श्री संजय प्रसाद चौरसिया।
2: जी, तो क्या करते हैं पापा जी आपके?
1: फार्मर है, किसान है।
2: अच्छा, चलिए तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
1: जी
2: जी, तो रुपेश जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगणमन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम ऑप्शन बी।
0: श्योर है? चलिए तो लॉक करूं। ओके तो रुपेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर वंदे मातरम बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए? दूसरा प्रश्न आपसे ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी टेलीफोन, सी कंप्यूटर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन डी को
0: टेलीफोन। श्योर है? ओके तो चलिए रुपेश जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी टेलीफोन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा कंप्यूटर। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: हेलो
1: हेलो
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: गणेश कुमार सीते नारायण सिंह।
0: कैसे हैं गणेश जी?
1: बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
1: पढ़ाई तो 7th क्लास तक हुआ है।
0: अच्छा, तो गणेश जी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट को कॉल किए हैं तो तैयार है आप आज के प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
1: मम्मी के पापा का नाम श्री सुभाषन पंडित, मम्मी के नाम श्री कुमार देवी।
0: तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
1: जी
0: जी,

0: गणेश जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम और ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी वाला को लॉक करिए।
0: बी वाला को
1: जी।
0: वंदे मातरम
1: जी।
0: क्योर है?
1: क्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: नहीं कर दीजिए।
0: चलिए तो गणेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन के कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन सी कर दीजिए।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: जी कर दीजिए।
0: चलिए तो गणेश जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विटामिन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका लुक्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिंजुम 90.4 FM। नमस्कार।
3: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे।
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 8570-3242 पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
2: और 9097-6160-02।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे समय 9:21 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हर रोज़ की तरह सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 7277-1665-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है, आप लोग तो मालूम है कि पुराने गाने के लिए यह कार्यक्रम चलता है, तो आप सभी से मेरा भी निवेदन है कि पुराने गाने के लिए ही कार्यक्रम है तो पुराने गाने की फरमाइश करेंगे। और कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैसेज के साथ शुरू करते हैं। पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सुनो जी, गाना सुनना है अमृता कुमारी सरिया वार्ड नंबर 4 से और नदिया के पार मूवी से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और आगे मैसेज

गोपालगंज से, और ये गाना सुनना है आया आया प्यार का जमाना। तो बिल्कुल आपका स्वागत है सफरोज जी, गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो गुड इवनिंग, हाउ आर यू, माय नेम इज़ शाहजहाँ विलेज मुगल ब्रिचा से, और सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश होगी तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा है, लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सुनो भैया, क्या हाल है, मैं मुस्कान गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, मैं विनय कुमार सिंह बिरवा से और मुझे विश्वात्मा का गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी, मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और आज मुझे भी सॉन्ग सुनना है। और तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम को आगाज करते हैं और सुनते हैं पहली फरमाइश हम सभी। सरिया वार्ड नंबर 4 से मैसेज करती हैं अमृता जी, नदिया के पार की गाने के फरमाइश करती हैं, सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम छिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-1665-96। ध्यान रखना कि गाने के फरमाइश पुराने होने चाहिए, 90s के होने चाहिए, तो ही आपकी फरमाइश हम प्ले कर पाएंगे, वरना आपकी फरमाइश नहीं प्ले हो पाएगी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, तू नींदों की रानी और मैं प्यार कर सपना, और उदित नारायण की आवाज़ में। तो चलिए आपकी फरमाइश उदित नारायण एंड अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में है, सुनते हैं इनके पसंद के गाने। और इस गाने की फरमाइश करती हैं प्रीति रैदास, विलेज लकड़ी, दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार से।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामझिम 90.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का, और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। और आगे कई मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश भी पूरी करेंगे, और कुछ मैसेज है तो मैसेज भी शामिल करेंगे। और यहाँ पर आगे मैसेज शाहजहाँ के तरफ से पहुँचा हुआ है, और कहा जा रहा है कि हम कई दिनों से मैसेज कर रहे हैं, हमारा गाना नहीं बजा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो दिक्कत तो कोई नहीं है, बस आज आपकी फरमाइश हम पूरी कर दें। आप कई दिनों से गाने की फरमाइश कर रही हैं, बट आपने नई गाने की फरमाइश कर रही है, जिसके वजह से आपके गाने हमने नहीं प्ले किए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए, मैसेज करती हैं प्रीति रैदास। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वाओ सुपर सॉन्ग, हेलो नमस्ते भैया कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोल दीजिएगा, और मैं भी जुड़ गई हूँ शो से और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, नाइस सॉन्ग। और इस मैसेज को करती हैं रोशनी मानिकपुर से, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सुपर सॉन्ग, सत्यम जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हमें भी सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग की फरमाइश, तेरी तिजोरी सोना नहीं मेरा दिल खिलौना नहीं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि ओल्ड इज गोल्ड सुपर लाजवाब सॉन्ग, हेलो क्या हाल है शबीना फ्रॉम दुलुलिया से, तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते भाई कैसे हैं, ठीक हैं सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है ना, मुझे गाना सुनना है भाई, सविता चौहान भुछपरा से मैसेज करती हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और यहाँ पे सुरेश जी गाने की फरमाइश किए हुए हैं, तो सुरेश जी आपकी फरमाइश हमने इस सप्ताह सुनाए हैं, हमें लगता है कल नहीं बीते परसों आपकी फरमाइश हमने पूरी की है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोना भैया क्या यह कार्यक्रम यूट्यूब पर सुन सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ से अभी सेवा उपलब्ध नहीं की गई है, और ऐप के माध्यम से ही केवल सुन सकते हैं, रेडियो रिमझिम का ऐप इंस्टॉल करें और कहीं भी सुन सकते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और इस मैसेज को पहुँचाने वाले राजीव नगर वार्ड नंबर 4 से हैं आदित्य पांडे जी, और आप ऐप इंस्टॉल करें, बिल्कुल कहीं भी आप जाएं एकदम सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कैलाश होटल से, और इस गाने की फरमाइश करती हैं अरशद जी की पत्नी जरीना, और अपने पूरे परिवार के साथ इनकी सिस्टर हैं, सब सुनना चाहती हैं लोग। और गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है अखियों के झरोके से, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने, हम सभी रेडियो रामझिम 90.4 FM पे।

वही प्यारा सॉन्ग सुनने हम सभी रेडियो एम जी एम 94.4 FM पे सोचल लाइस में फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे और आगे गाने की फरमाइश भी पहुँचे हुए। आगे लिखा गया कि सुपर सॉन्ग, और कहते हैं कि हाय सुनो भाई, मेरा गाना नहीं बजेगा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं बज पाएगा, क्योंकि आपके गाने तो हम सुना चुके हैं। सो आप दूसरों को भी सुनने का मौका दें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कई दिन से लाइन में लगे रहते हैं और उनकी फरमाइश बाकी रह जाती है। आगे कुछ मैसेज पहुँचे थे, मैसेज दिखे, आगे मैसेज पहुँचा, लिखा गया है कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग, मैसेज करती है रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सुनो सर जी, मेरा एक वीक हो गया है, और इस मैसेज को करते हैं अनूप यादव लुधियाना पंजाब से। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। यदि आप लोग एक वीक बाद गाने के फरमाइश करते हैं या एक वीक हो गया है तो फरमाइश करते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों की फरमाइश पूरा करने का मेरा प्रयास रहेगा, और आप लोग अपने से मैनेज करें, दूसरों को भी सुनने का मौका दें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो लाइन में लगे रहते हैं और समय बीत जाते हैं, बाकी लग जाते हैं उनके गाने को पूरा करना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो वो भी अपने पसंद के गाने सुन पाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और आगे गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं सफरोज अली जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, आया आया प्यार का जमाना आया। चलिए सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजैक पर।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629335383।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
9: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है विनय कुमार सिंह जी की तरफ से। यह मैसेज भी बीरवा से किए हुए हैं और कहते हैं कि मुझे विश्वात्मा का गाना सुनना है और गाने का बोल है सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। सोनू बाबू, मुझे पूरा विश्वास है कि आप गीत को ज़रूर सुना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपकी फरमाइश भी हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे।

सभी प्यारा संग रेडियो 94.4 FM पे सुन रहे आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, भाई मेरी गाना सुना दी, इसलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस मैसेज को करती हैं शबीता चौहान मिले बहुत छपरा से, और गाने की फरमाइश करती हैं, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। सबसे पहले आपको भाई और सभी दोस्तों के साथ सुनना है, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो 94.4 FM पे।

सभी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी रेडियो रेम छिम 90.4 एफएम पे और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और आगे देखे तो समय भी देखे काफ़ी समय निकल चुके, बहुत कम समय बचे हुए हमारे पास और हमें लगता है कि एक ही गाने प्ले हो पाएंगे आगे। और आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे, लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग और मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुँचा, थैंक्स भाई आपको धन्यवाद शबीता। आगे मैसेज पहुँचा सुपर सॉन्ग और मैसेज करने वाले सफरोज अली जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और इस मैसेज को पहुँचाती हैं मुस्कान गोपालगंज से और गाने के फरमाइश करती हैं तू है 16-17 साल की, सुनाना चाहते हैं आपको और सुनने वाले सभी रेडियो दोस्तों को प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो चलिए आपकी गाने हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हैं क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो चुका है और इसके बाद से गाने शामिल मैसेज शामिल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है और फिर अगले मंडे को मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तो आप सब सुनते रहें रेडियो रमछिम 90.4 एफएम जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 88 91 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और आप सभी के लिए पेश करती हूँ अपनी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग और उसके बाद लूंगी सभी के मैसेजेस और कॉल्स।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग, तेरी चुनरिया दिल ले गई। तो बताइएगा आप सभी को गाना कैसा लगा, और इसी के साथ चलती हूँ, अब बढ़ती हूँ आगे। और यहाँ हमारे पास बहुत बहुत बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शमशेर मुंबई से, और यहाँ हमारे पास एक मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, आई एम बंटी फ्रॉम KGS पटना एंड माई फॉर माई सॉन्ग जब साथ देवे के ना रहे तो प्यार कहे कैलू। ओहो, और लिख रहे हैं आप मेरा मैसेज रीड नहीं करती हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं सभी के मैसेजेस रीड करती हूँ। अभी थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन सभी के मैसेजेस मैं एक एक करके रीड करूँगी, मतलब पढ़ूँगी। तो चलिए बिना देरी किए हम गाने को प्ले करते हैं, और बंटी जी के गाने को प्ले करते हैं। और गाना है जब साथ देवे की ना रहे तो प्यार कहे कैलू। तो चलिए इस गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं ये गाने को।

पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो नमस्ते मैम, मैं सिद्धार्थ मुजफ्फरपुर से, गांव प्रेमी चंपारण से, हम भी जुड़ गए हैं तो, और तेरी चुनरिया ये सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है। ओहो, चलिए बहुत

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9554 97644।

0: छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852 78 22 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। और हमारे पास यहाँ एक कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है और लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश की क्या है। हेलो
1: जी। हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी, मैं दीपक ठाकुर
0: जी,
1: टेमरा से, टेमरा गोपाल भाई।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? भारती बोल रही हूँ। हाँ जी, और सब तो ठीक है।
1: एक गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: गाने का बोल है, प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म का नाम है मुगले आजम।
0: प्यार किया तो डरना क्या
1: जी, प्यार किया तो डरना क्या, पुराना सॉन्ग है, शायद लोगों को पसंद आ जाए।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ हाँ, सुनाना चाहते हैं।
0: बता दीजिए।
1: पप्पू ठाकुर, एक हमारा भाई है चंदन ठाकुर, और शिवलू, सुनाना चाहते हैं।
0: अच्छा, चलिए फिर मैं आपका गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: थैंक यू।

यहाँ सुनील कुशवाहा एमपी से जो कि जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्कार, राधे राधे। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग दीपक जी की तरफ से, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यह मैसेज पहुंचा हुआ है सोनी जी की तरफ से, जो कि लिख नहीं है, सोनी सिस्टर नहीं है क्या? तो अभी तो आज छुट्टी पे हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम था। कभी कभी उन्हें भी छुट्टी का मौका दीजिए। आपका नाम क्या है? मैं तो मेरा नाम भारती है। मेरा सॉन्ग नहीं सुनना नहीं सुनाना है तो बता दीजिए प्लीज़। नहीं नहीं, आपका भी सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ, तो यहाँ गाने की फरमाइश है। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए गाने प्ले करते हैं सोनी जी की तरफ से, और एंजॉय कीजिए इस गाने को।

आपका भी वेलकम है शो में। भारती जी शानदार गाना के साथ प्रोग्राम का आगाज की है, तेरी चुनरिया दिल ले गए। लेकिन भारती जी किसकी चुनरिया थी, मैं यही सोच रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस शो में।

0: और इसी गाने के साथ पढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं आपसे।
1: कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैं नौशाद मोबाइल विक्रमगंज से। गाने के लिंक यहाँ पहुँचे हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। दुकान पर इंतज़ार कर रहे हैं और मौसम यहाँ का बहुत सुहाना है। और भारती जी मेरा नंबर देखिए और गाना बजाइए। तो जी बिल्कुल, आप ही की गाने की फरमाइश प्ले करने जा रहे हैं। और

गाने की फरमाइश है, जैसे तू मानेगा। मना रहे हैं सभी, तो चलिए बिना देरी किए प्ले करते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग और एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

पर यहाँ थैंक यू मैसेज पहुंच चुका है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। यहाँ पर बारिश हो रहा है आपके जिला में, बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइएगा। मैं नौसाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से, तो यहाँ तो अभी बारिश नहीं हो रहा है और इंजॉय कीजिए अपने।

तो अभी हम लोग ने सुना नौशाद जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जैसे तू मानेगा मैं मना लूँगी। तो चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं यहाँ अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है बसंती देवी लामीचौर से, जो कि रहने वाली हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, जो कि लिख रही हैं, दर्द मिले हैं काफ़ी मगर हमने मुस्कुराना कहाँ छोड़ा, टूटे हैं ख्वाब कई फिर भी जिंदगी में मुंह कहाँ मोड़ा है, रास्ते मुश्किलों से भरे हैं पर हमने चलना कहाँ छोड़ा है, जिंदगी के इस उतार चढ़ाव में भी उम्मीद से नाता कहाँ तोड़ा है। हेलो हाय भारती जी, हर हर हर महादेव। तो हर हर महादेव आपको भी, और हमारे तरफ से सभी को बोल दीजिएगा। तो आपकी तरफ से मैंने सभी को बोल दिया है। और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं मैम ये ओरिजिनल सॉन्ग बजाइए, ये तो एआई जनरेट किया गया है। तो जी एआई जनरेट है, और जिसको जैसे गाना पसंद होगा और जो उन्होंने लिंक के द्वारा भेजा हुआ था इसीलिए मैंने बजा दिया। तो चलिए इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम गुड आफ्टरनून, मैं बहादुरपुर दिल्ली से नूर आलम, मैं भी जुड़ गया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ गाना है दिल ना किसी का जाए जाए तो जाए। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं इनके गाने को और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

और यहाँ हमारे साथ दिनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं, भारती मैम मेरा भी हाजिरी लगा देना, सोनी मैम आज छुट्टी पर हैं क्या? तो हाँ जी बिल्कुल, सोनी मैम भी आज छुट्टी पे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी दिनेश मिश्रा जी।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा,
10: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 अमर जेड पर।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती मैडम, हम भी शो से जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

और मुझे और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपना नाम लिखें ताकि मैं आप सभी को पहचान सकूं, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और मैं आप सभी को तो जानती नहीं हूं, एक एक करके धीरे धीरे पहचान रही हूं, तो प्लीज़ अपना नाम मैसेज में लिखना ना भूलें। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए लिख रहे हैं, मैसेज पढ़िएगा ज़रूर। नमस्ते, नमस्कार भारती जी, मैं राजकुमार राम एमपी बालाघाट से, हमको भी एक गाना सुनवाइएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे साथ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भारती जी। तो वालेकुम अस्सलाम, मैं नौशाद अली मोतिहारी ज़िला से आपका रिमझिम प्रोग्राम में आपका हमारे तरफ से स्वागत है। हर शनिवार को शनिवार आपका इंतज़ार रहता है इस प्रोग्राम के लिए। सुनी जी, मेरा भी गाने का फरमाइश है, अगर जल्दी बजा दिए तो सुन लेता, क्योंकि हमको भी कुछ काम है। गाने का लिंक भेज दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं। और गाने के बोल हैं, शीशा हो या दिल हो, तो बहुत ही शानदार गाना। चलिए इसी गाने को सुनते हैं और इंजॉय करते हैं।

तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग अभी हम लोगों ने सुना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, इस मिलावट के ज़माने में सिर्फ बिजली विभाग ही हैं जो शुद्ध माल बेचता है, विश्वास ना हो तो हाथ लगा कर देख लें। जी जी, ये तो बात सही है। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे प्रणाम। कल मेरा गाना नहीं बजा था, आज मुझे एक गाना सुना दीजिए, बर्बादी हुई तो हुई पर शादी ना हुई। तोरा से सुजीत कुमार जी जुड़े हुए हैं प्रेम नगर बस्तरा राज लालगंज मिर्जापुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर अमोद कुशवाहा ग्राम जई छपरा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, मुझे भी गाना सुना दीजिए, मुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। और यहाँ बसंती जी की तरफ से गाने की फरमाइश आई हुई है, और गाने की फरमाइश है, कहे तो उसे सजना। तो बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश है और चलिए इसी गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं बसंती जी की फरमाइश को।

0: अपन अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782291। जी हाँ, 9852782291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277166596। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेजेज पहुँचे हुए हैं, जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है मुख्तियार फ्रॉम पाकिस्तान, मैं भी जुड़ चुका हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मुस्तफ़ा सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं का हाल चाल बा भारती जी। तो हमारे तो हाल चाल ठीक बा, रोवा लोगिन अपन हाल चाल बताए लो, रोवा लोगिन कैसन बानी। फिर हमारे पास यहाँ एक कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना। अच्छा, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। तो कौन
1: लगाने के बाद
0: जी जी, इसी में सबकी फरमाइश का ख्याल रखना पड़ता है। तो बता दीजिए अभी आपकी कौन सी गाने की फरमाइश है।

तो चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं राधे राधे भारती जी, कैसी हैं आप? मैं सुरेश कुमार बीकानेर राजस्थान से, मैं भी आपके चैनल से जुड़ गया हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मेरी बच्चिया आपकी बहुत

मेरी बच्चिया, मैं आपकी बहुत अच्छी फैन हूँ। दिव्या आपको नमस्ते बोल रही हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। इनकी पसंद का गाना सुना दो। तो जी बिल्कुल गाना सुनाऊंगी, लेकिन हमारे पास एक और यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है, जो कि डॉक्टर अमोद कुशवाहा, ग्राम जय छपरा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और लिख रहे हैं मुझे गाना सुनवा दीजिए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। तो चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेजेस पहुँचे हुए हैं जो कि धनेश जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम ऐसे ही कछुए का चाल चलते रहिए, खरगोश से जीत हासिल हो ही जाएगा, तो कोशिश तो कर ही रही हूँ। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हमें भी सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग है मन के सवरिया बन गई लो तू। और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सुजीत कुमार बस्त्रा राज प्रेम नगर लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे प्रणाम, कल मेरा गाना नहीं बजा था, आज मुझे एक गाना सुना दीजिए। तो जी बिल्कुल गाना सुनाऊँगी। और यहाँ गाने के बोल हैं, बर्बादी हुई तो हुई पर शादी ना हुई तोहरा से। और लिख रहे हैं, हेलो भारती जी क्या हुआ, कल से ही मेरा गाना नहीं बज रहा है, अगर गाना चेंज करने का हो तो भी बता दीजिए। तो नहीं, गाना चेंज नहीं करना है। चलिए मैं आपको गाने को प्ले करती हूँ और एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं झकास बा बर्बादी सॉन्ग, तो एंजॉय कीजिए गाने को।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही शानदार सा सॉन्ग शादी ना हुई तुरे से, तो चलिए इसी गाने के साथ हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है एक और आरजे जिनका नाम मनोरमा है और अगला मैसेज वहीं शामिल करेंगी।

0: नमस्कार जी, अगला मैसेज है सुरेश कुमार जी की तरफ से और ये बोल रहा है राधे राधे भारती जी, कैसे हैं आप। मैं सुरेश बीकानेर राजस्थान से भी आपके चैनल से जुड़ गया हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मेरी बच्ची आपकी बहुत अच्छी फ़ैन है निव्या। दिव्या आपको नमस्ते बोल रही हैं। तो जी नमस्ते, इनकी पसंद का गाना सुना दूँ। जी बिल्कुल, इनका गाने की फरमाइश है कौन तुझे, MS धोनी फिल्म का मेरा गाना सुनाओगे क्या मैम। जी बिल्कुल,
1: तो चलिए इसी के साथ सुरेश कुमार जी के गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं इनकी तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं। हमारे पास एक मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं सोनी मैम जी, गुड आफ्टरनून। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सोनी दी आज छुट्टी पर हैं क्या, बताइए। तो जी हाँ, सोनी जी छुट्टी पर हैं। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हमें भी सॉन्ग सुना दीजिए। तो बिल्कुल सॉन्ग सुनाऊंगी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी हमारा हमरे गाना बजा दें, हम लंच करे जाना है, हमको लंच करने जाना है, हर हर महादेव। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और ये वॉइस के माध्यम से मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए प्ले करते हैं वॉइस और सुनते हैं कि क्या मैसेज है।
1: हर हर महादेव भारती जी, मेरा नाम शंभु यादव, घर बस जिला भागरखाप, जिला गोपालगंज बिहार। और मैं यहाँ सामने पुलिस लाइन में पहले कार्यरत था, अभी भी काम कर रहा हूँ, पुलिस लाइन में काम करता हूँ। तो मुझे गाना सुनना है बरसात पिक्चर से, कोई भी गाना चला दीजिएगा। और कुछ मेरे दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे हमारे शॉप का प्रोपराइटर हैं दिलीप जी, और हमारे भैया हैं भूवर भैया हैं, और हमारे कुछ लड़कियां हैं जो सुनेंगी, जो कुछ यहाँ पे काम करती हैं, प्रीति है, पिंकी है, काजल है और प्रियंका जी हैं, और निरंजन भैया हैं, भूवर भैया हैं, हमारे मास्टर जी भूवर भैया हैं, निरंजन भाई हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं। तो हम बहुत पुराने आपके लिस्टनर हैं। सोनी मैम पहले प्रोग्राम करती थी, मैं भी काफ़ी दिनों बाद जुड़ा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ आपसे निवेदन है कि बरसात पिक्चर से कोई भी गाना आप चला दीजिएगा भारती जी। और सावन के पावन महीना में आपको हर हर महादेव, पूरे जितने भी मेरे दोस्त रेडियो सुनते हैं सबको मेरे तरफ से हर हर महादेव। और प्लीज़ मैम चला दीजिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: यहाँ शंभू जी की तरफ से जो वॉइस पहुँचे हुए हैं लिख रहे हैं बरसात मूवी का गाना सुनना है कोई भी। तो चलिए शंभू जी की तरफ से ये गाना, खूबसूरत सा गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं इनकी पसंद के गाने को।

तो अभी हम लोगों ने सुना शंभू जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बरसात के दिन आए, बरसात मूवी से। तो चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं राम राम भारती जी, ओपनिंग सॉन्ग नाइस का हलवा। तो हालचाल तो बहुत अच्छा बा। और लिख रहे हैं भारती मैम, आप शो बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, थोड़ा सा समय और दीजिए, बहुत जल्द आपकी छोटी छोटी कमियां भी अपने आप दूर हो जाएंगी, अनुभव के साथ आपकी प्रस्तुति और भी शानदार होती जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी सलाह, हर गाने के बाद ब्रेक लेने की बजाय दो या तीन गाने के बाद आरजे लिंक या ब्रेक लें, इससे शो का फ्लो बना रहेगा, श्रोता भी जुड़े रहेंगे और पूरा शो अधिक प्रोफेशनल लगेगा। तो जी मैं आपकी बातों पे ध्यान दूंगी, बाकी आपका काम बहुत अच्छा है, ऐसे ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। हमरो एगो रिक्वेस्ट बा जगह बाकात जी, बिल्कुल आपके लिए भी यहाँ जगह है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लिख रहे हैं हमारे इधर माहौल पूरा बारिश की तरह बना हुआ है। और लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग मुलाकात के दिन आए। तो चलिए इसी मैसेज के साथ बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ। और अगला मैसेज यहाँ मनोरमा जी पेश करने वाली हैं, तो

अगला मैसेज है सुनील यादव की तरफ से। मैसेज है, हेलो मैम नमस्कार जी, नमस्कार। और एक गाना है सिल्फी राज का, शादी हुई तोहरे से। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6252-62112 पे।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: गाना सुने बा?
0: तो बता दी कौन सा गाना सुने बा?
1: हम तुमसे मिलने आए मंदिर जाने के बहाने।
0: और गाना क्यों के सुना हूँ के बा?
1: जितना रेडियो सुनता सब कोई के।
0: चलिए ठीक बात है, गाना रात प्ले कर दे लवानी, एंजॉय करिए अपना गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते बोला तो नहीं बोली।

तो यहाँ अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रामा जी की तरफ से, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है मनोरमा जी के लिए, तो यहाँ मनोरमा जी पढ़ेंगी इस मैसेज को।

0: अम्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी रेडियो रिमझिम को। हार्दिक बधाई। मैं नंद कुमार शर्मा सिगरौल मध्य प्रदेश से, हो सके तो एक गाना सुना दीजिएगा रिमझिम। रिमझिम से तरने ले आई बरसात, और एक मैसेज है धनीश कुमार मिश्रा जी की तरफ से, और यहाँ मैसेज है, ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना आज़ादी के लिए कोई जंग में उतरना ही नहीं। लोग घर बैठे ही कहते हैं कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद भारत छोड़कर भाग जाए।
1: इसी मैसेज के साथ बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है अनिल जी की तरफ से, जो कि दरभंगा के रहने वाले हैं और लिख रहे हैं, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। तो गाने के बोल हैं, मन के संवरिया बन गई लो तू, तो बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश है। तो चलिए इसी गाने को प्ले करते हैं अनिल जी की तरफ से, और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: ऑपरेशन में अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: अब बेटा, बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा, मिला ही नहीं
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे पास यहाँ एक कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, चलिए कॉल लेते हैं और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार,
0: नाम बता दीजिए अपना। और कौन सा गाना सुनना है आपको? भारती अच्छा जी, तब आज जाके लागल है ना। ना रो में कोनो कमी नहीं है,
1: दुश्मनी का हमरा से
0: ना ना दुश्मनी कहाँ से रो से रही।
1: अरे भाई, हमने के एसएमएस मैसेज करे के लूज नहीं है तो कॉल में कर सहारा।
0: जी जी, समझता नहीं।
1: हाँ,
0: कोनो बात ना, आज रिसीव कर।

0: पुराना गाना है।
1: ना ना रोल अभी इनके बताओ गाना एकदम झकास झकास आवेला। चलिए ठीक बा, गाना प्ले करते नहीं सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं।

0: इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
2: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
2: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।

0: विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
4: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
9: भरोसे वाले से लेंगे,
8: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
9: और कीमत भी।
8: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
10: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
12: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
12: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
12: कॉल करें 85070-32042 पे।
15: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
16: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
15: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
16: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
15: संपर्क करें 9939365923।
17: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
8: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6205062112 पे।
11: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस की शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852 78 82 91, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और मैसेज पहुँचा हुआ यहाँ सन्यासी जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, विदेशों द्वारा की गई खोज, हवाई जहाज, मोबाइल फोन, फेसबुक, फ्रिज, रॉकेट, इंटरनेट, परमाणु बम और फैन आदि। भारतीयों द्वारा की गई खोज, भूत, प्रेत, राक्षस, चुड़ैल, आत्मा, वशीकरण, सौतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार पाने के तरीके आदि। ऐसा नहीं है, हमारे यूपी और बिहार के लोग भी कम नहीं हैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, हाय नैयम अंसारी जमतारा से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भारती जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, मैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से हर शनिवार को सोनी जी का छुट्टी मिला है रेडियो रिमझिम की तरफ से। चलिए ठीक है, आप प्रोग्राम चलाइए, अच्छा चल रहा है। थोड़ा मैसेज पढ़ने में आपको दिक्कत हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो और अच्छा होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, और बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है धर्मेंद्र कुशवाहा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, मैं अभी जुड़ा हूँ, तो मुझे एक गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। तो बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की फरमाइश है धर्मेंद्र जी की तरफ से, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे धर्मेंद्र जी की तरफ से। तो चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है विपुल सिंह जी की तरफ से। सपोर्टर अंश असलम और इनकी तरफ से एक यहाँ जोक्स पहुंचा हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं जोक्स को। लिख रहे हैं, छात्र पेपर दे रहा था, पेपर में पूछा गया कि अनुवाद करें अंग्रेजी में, संतोष आम खाता है। एक छात्र ने अनुवाद किया, जिसे पढ़कर आपकी ही नहीं अंग्रेजों की भी आत्मा कांप गई। सेटिस्फेक्शन इज ए जनरल अकाउंट। और इसी के साथ हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है। लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूं, मैं रोहित देहरादून से, और मैम बारिश हो रहा है बहुत तेज़, वहां का मौसम कैसा है? तो यहां तो अभी मौसम ठीक है, यहां बारिश नहीं हो रहा है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी गुड आफ्टरनून। तो मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक, फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिंक के माध्यम से इनकी फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए देखते हैं क्या फरमाइश है और सुनते हैं इनकी फरमाइश। सॉन्ग है आजा आजा। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है धनेश जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं ऐसा, इस चुटकुल्ले के साथ मैं फिर से जुड़ गया हूँ भारती मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और चुटकुला है, मुझे आज सड़क पर 50 रुपये का नोट मिला, मैंने ईमानदारी दिखाते हुए पास के कचौड़ी वाले को वो नोट दे दिया, उसने खुश होकर मुझे 3 कचौड़ी और 2 जलेबी दे दी। बहुत ही प्यारा सा चुटकुला। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है संतोष कुमार पटेल सूरत से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनको गाना सुनना है तोता मेरा तोता, तो चलिए बिना देरी किए इनकी फरमाइश का सॉन्ग प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं गाने को।

तो अभी हम सभी ने सुना संतोष जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग तोता मेरा तोता, और इसी सॉन्ग के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं मैम क्या हालचाल है। तो बहुत बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मनोज कुमार लुधियाना से जुड़े हुए हैं जो कि गाना सुनना चाहते हैं शादी हुई तोरे से, तो ये तो गाना अभी

दोपहर न्यूज़ के पहले प्ले किए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों की फिर से फरमाइश आ रही है तो मैं एक बार और प्ले कर दूंगी। और सभी लोग सुन लीजिए फिर से इस गाने को और इन्जॉय कीजिए इनके साथ, मनोज कुमार जी के साथ। गाना है बर्बादी हुई, तो इन्जॉय कीजिए गाने को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है। जो कि लिख रहे हैं फिल्म आन गीत दिल दिल से दिलवर। यह खूबसूरत गीत मैं रेडियो रिमझिम के सभी श्रोताओं आरजे भारती जी आरजे मनोरमा जी और योर वॉइस योर चॉइस के शो सुनने वाले सभी रेडियो दोस्त को समर्पित करता हूँ। आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहें और यूं ही बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें। रेडियो फैन पंकज, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए इनके द्वारा गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं इस गाने को।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग पंकज जी की तरफ से, दिल से दिलवर। तो चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: अच्छा है।
0: अपना नाम बता दीजिए। जी जी, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुना जी, कौन से
0: का? कौन सा?
1: कौन सी का गाना? बराती में एक पिसमाल दिया जी।
0: एक बार और बोल दीजिए।
1: कौन सी का गाना है? मैंने गाना बराती में एक पिसमाल दिया जी।
0: आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है।
1: हेलो,
0: आप बोल दीजिए।
1: आप आवाज आ रहा
0: है? हाँ हाँ।
1: बराती में एक पीस माल दिया था।
0: बराती में
1: एक पीस माल दिया था।
0: एक पैक,
1: एक पीस माल दिया क्या?
0: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
1: आपको? जितना रेडियो रिमझिम दोस्त सब है, आगे सब सुनते हैं सबके साथ।
0: ओके, चलिए फिर गाना आपका प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए अपने गाने को सभी के साथ।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87-894-18744।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं, जो कि मैसेज करने वाले हैं गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से, और लिख रहे हैं राधे राधे जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मैडम जी, हमारा भी हाजिरी लगा देना, तो आपकी भी हाजिरी लगा दी हूँ। और इसी के साथ बढ़ती हूँ अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, लिंक भेज रहे हैं, गाना सुना लीजिएगा। दिलीप राम दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं पंकज भाई, प्यार तक ही रही कि आपकी गाड़ी आगे भी बढ़ी, और लिखने वाले हैं दिलीप राम, और इनके द्वारा लिंक के द्वारा सॉन्ग पहुंचा हुआ है और कुछ विदाई से रिलेटेड सॉन्ग है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं इनके गाने को।

0: अरे चलो चलो भाई, विदाई का समय हो रहा है, जल्दी करो।
1: बस भैया दो मिनट और रुका।
0: अरे क्या रुका, देखा तो भाई दुलावा बेचारा कितना बेकल भला।
2: अरे दीदी जल्दी चल, जीजा मिले खातिर एकदम चकवासल है।
3: काहे के हम मनाई
4: काहे से कि बियावा तू ही न कराओ तो वा
3: पण हो त तो ना
5: गलवा साथ रहो बोरे माई
3: अरे रोके तो गलवा जो चले उ तो के कर
2: ए कैमरामैन अब इधर से खिसला माई रुई
0: अच्छा ठीक है ठीक है।

0: दे माई, हमारा राज मत खोल।
1: काहे माई, अब लाज रखता
2: रे। जैसे तैसे मिलल बा और रजिस्टर करा बहिनी।
0: ए माई, देखो कुछ समनिया रखा गेल ना। चल ठीक हे कैमरा मैन, कैसा आयल है देखी तनी?
3: ला देख ला।
0: हाँ हो ठीक का आयल है। ठीक है, अब पापा के अन जाती है, फोकस कही ले रही है।
3: हाँ ठीक है।
4: अरे हमारे पापा
5: मत रोवाओ ना, तो हम और रोवे लगा।
4: हम तो के छोड़ी के ना जाई बो हो पापा।
5: हे चला

0: अरे बेटा लक्ष्मी का लात तू बोला
1: ओके पापा, पर पापा का यही तेरे रोज मारी?
0: हाँ बेटा ये परंपरा
2: अच्छा
0: तोर माई हमू के रोज एक एक लात देते रहे
1: अच्छा, पापा
0: हाँ बेटा
3: पापा भैया कहाँ है पापा?
2: अरे औका न रोवत है गड़िया तक
3: हे कैमरा मैन हम अपने भैया के अनजात हैं फोकस बनौले रही है
4: ठीक
3: अरे हमारे भैया तो हम ज्यादा रोते चली तन की देखी तो

कॉमेडी से भरा था, जो कि पंकज जी के लिए था, दिलीप राम जी की तरफ से। तो चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है सुनील कुमार जी की तरफ से, जो कि मीरगंज के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, लिख रहे हैं हेलो भारती मैम, और गाना सुनना है इनको, शाम है धुआं धुआं, हिंदी सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं मनोज जी के गाने को।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: तो छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और समय हो रहा है 3:49। तो इसी के साथ बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है। संतोष राम, जो कि मोतिहारी पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, और इनको भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गाने के बोल हैं छम्मक छल्लो। और लिख रहे हैं, मैं भी आपका आपके प्रोग्राम से जुड़ा हुआ और प्रोग्राम सुन रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने

और यहाँ हमारे सन जुड़े हुए हैं। मुन्ना कुमार पटेल थाना मोतिहारी जिला से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और विनोद कुमार चौहान विलेज कोयनी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो बहुत

लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग छम्मक छल्लो। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, पहले आपसे निवेदन है कि मैसेज पढ़िएगा जरूर। नमस्ते नमस्कार भारती जी, हम चंदन कुमार बालाघाट MP श्लोक राइस मिल से, हमें भी एक गाना सुनाइएगा। और धड़कन धनंजय जी का है और गाने के बोल हैं बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया के। और हमारे साथ हमारे मामा जी हैं भूस सुभाष जी, राजकुमार जी, बलवंत जी और बालवीर कुमार, जरूर सुनाइएगा मैम। और लिख रहे हैं, क्या मैडम जी हमसे दुश्मनी है, क्या कोई गाना नहीं सुनाइएगा अभी तक, या तो गाना सुना दीजिए। तो नहीं, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और आप ही का गाना प्ले करने जा रहे हैं। तो चलिए गाने को अपने इंजॉय कीजिए सभी के साथ।

0: तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191 और कॉल करने के लिए नंबर है 7277165। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी के लिए मैं एक सॉन्ग प्ले करती हूँ और इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लूँगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। नमस्कार।
1: प्यार में बस प्यार में बनने में।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजद पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

समय केहू के छोड़ले नहीं के भैया, जे भी आयल बा ओकरा एक दिन जाए के पड़ल बा, के कैसे गइल बा ई मालूम नहीं खे। आई समय के फेर में कैसे समय धके दबोचता, सुनिए कहानी में।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज। संपर्क

0: करें 9006978856 या 6203139564।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दें, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6550।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-46651 या 97-0-97-06-575।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
8: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: राजा। तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9939365923।
12: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 7070-7563 या 7070-7542 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
12: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम, हर हर महादेव।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: पूर्वी चंपारण बिहार के परराज बाबा सोमेश्वर नाथ से बोल रहा हूँ, जूना साजी।
1: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: बढ़िया है, फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में हूँ।
1: तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: दूल्हा गंगा पार के गाना सुना दीजिए। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल भी अबे तोरे दुआरी भोलेनाथ।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
2: जी जी जी, फर्स्ट तो है रामविलास कुशवाहा जी कीर्तपुर बगहा से, वैसे धर्मेंद्र यादव जी और दिनेश साजी, उमेश साजी और भरत साजी, रवि कुमार साजी और रेडियो सुनने वाले सब साथी मेरे को सुना दूंगा।
1: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं संत रेडियो 90.4 FM।

0: जी बहुत
1: हेलो।
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम।
0: क्या हाल
1: बहुत
0: चाल है?
1: अच्छा है, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। नाम बता दीजिए अपना।
1: ईशा कुमारी।
0: कहाँ से?
1: हम गोपालगंज पोस्ट ऑफिस से है, वहीं पे।
0: तो कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए, आज बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है।
1: ये लो बता, ये मेरा भाई बताएगा मैम।
0: जी दे दीजिए।
1: हेलो,
0: हाँ बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते।
1: एक मुझे गाना सुनना है।
0: बता दीजिए।
1: बवली में पैसा वाला हिंदी
0: हिंदी सॉन्ग है। गाने के और कुछ लाइन याद है थोड़ा बहुत सुना दीजिए ना।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें

0: 1-800-665-7550।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11:00 से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
7: नमस्ते मैम,
8: हो रहा है समय। नमस्ते
7: जी, मैं प्रदीप सामी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
8: क्या हाल चाल है आपका?
7: ठीक है जी, अपना बताइए।
8: हमारा भी ठीक है।
7: मुझे एक सॉन्ग सुनना था।
8: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
7: ये दुल्हा गंगा पार का सॉन्ग सुनना है, टाइटल सॉन्ग।
8: अच्छा,
7: इतना बता दो ये दुल्हा गंगा पार के, ये गंगा सॉन्ग सुनना।
8: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
7: जी, अंकुश कुमार और प्रिंस कुमार, रमरजीत सामी और जितने रेडियो में सुन रहे हैं सारे।
8: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।
7: थैंक यू मैम,
8: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: कैसी है मैम?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी हम भी अच्छे हैं। बारिश उधर हुआ है रात को?
1: बारिश तो पूरी रात हुई है।
0: हम लोगों को भी यहाँ बारिश बहुत हुआ है, चारों तरफ सादा ही सादा दिख रहा है पानी ही पानी।
1: चलिए, इसी का तो सबको तो बेसब्री से इंतजार।
0: मैम गाना सुनवा दीजिए एक तो।
1: बता दीजिए।
0: गाने का बोल है, बादल यू गरजता है, डर कुछ ऐसा लग रहा है।
1: और सॉन्ग किसी से डेडिकेट है?
0: डेडिकेट आप सुनिएगा, जितने रेडियो रिमझिम रोता है सभी सुनेंगे।
1: ओके
0: जी मैम,
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। वेलकम।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
0: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
0: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
0: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
0: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
0: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
3: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 FM में।
4: जी नमस्कार, मैम सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ। मैम मायर एम,
5: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
4: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
5: तो आज कौन सा सॉन्ग सुनना है?
4: आज सुनवा दीजिएगा ना कजरे की हार।
5: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
4: मैं रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहता
5: हूँ। ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते, नमस्कार दिवस कैसी है?
1: नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं तो आवेज मस्त मिलता है, सकाश रहता हूँ। रेडियो फैन मोहम्मद खान, ना बताइए सब क्या हो रहा है? ब्रेकफास्ट हो गया?
1: ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, और आपका?
0: मेरा भी बहुत पहले हो गया है।
1: अच्छा,
0: और सब सुनाइए, मौसम कैसा है अपने यहाँ का?
1: यहाँ का मौसम अभी ठीक है।
0: सुने की बारिश हो रही है?
1: हाँ, बारिश हो रहा है, लेकिन कभी कभी, लेकिन मौसम ठंडा
0: है। यहाँ पे तो काफी गर्मी है दुबई में, 45 क्रॉस कर गया है, कभी कभी 50 भी चला जा रहा है। तो मुझे सॉन्ग सुना दीजिएगा दयावान मूवी के।
1: और सॉन्ग कौन सा है
0: आज फिर सुन के क्या रहा है?
1: अच्छा, तो चलिए
0: आपके साथ निकल भारतीय सरकार खातून सागरता फिर दो और लिस्टनर को, और अनिल भाई को भी, छोटपुर वाले अनिल भाई, उनको भी सुनवा दीजिएगा।
1: चलिए फिर, ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सब कुछ रेडियो 92.4।
0: थैंक यू।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-6575।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
9: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
9: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
10: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
11: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
12: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
13: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
15: नमस्ते मैडम
16: जी। नमस्ते।
15: हेलो।
16: हाँ जी
15: मैडम, मुझे गीत सुनना है
16: जी। नाम बता दीजिए।
15: उमाशंकर से बोल रहा हूँ।
16: और कौन सा गीत सुनना है आपको?
15: दिल्ली आने का डोला जुमार के लिए।
16: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
15: मैं भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, सभी लोगों के लिए।
16: अच्छा, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मैं मोहम्मद अंसारी जयपुर से
1: जी,
0: और मैं कई बार लगा चुका हूँ और रिकॉर्ड करा भी चुका हूँ। मेरा सॉन्ग चलता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है?
1: ऐसा तो नहीं है, सभी का कॉल प्ले होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपका प्रॉब्लम हो जाएगा।
0: ऐसा है कि मुझे गाना सुनना है, गाना खेसारी लाल की आवाज में चलवा दीजिएगा।
1: बता दीजिए कौन सा?
0: प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: एक बार और बोल दीजिएगा।
0: प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: सुनाना है, सब दिन मामा है, अजरुद्दीन भाई है, और समीर भाई है, और सोहन भाई है, अजीम भाई है, सबको सुनाना है, और ये गाना सुनना चाहते हैं सब हम।
1: जी बिल्कुल, प्ले करेंगे, प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87894 18744।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
14: हेलो हेलो हेलो हेलो।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
12: जी नमस्ते।
16: नमस्ते,
12: तो क्या हाल बा?
16: हमारे तो ठीक बार, वो बताइए अपन रोबा कैसे बानी?
12: ठीक बानी, भारती भी ना। एक ला पहले तो ना तो नहीं हाँ।
16: नहीं, बुधवार के दिन छुट्टी पे रहा।
12: अच्छा अच्छा, मनोरमा जी रहने वो दिन। गाना सुना दी हमसे ना भंगिया पिसाइए गणेश के पापा ना यहाँ जाता लो। ये गाना बाजी
16: और ये गाना क्यों के सुनाई वो करे हम
12: पूरा ये नादनी जोर बस सब सुनी।
16: जी चलिए फिर ठीक बात है, गाना प्ले करते नहीं सुना ट्रेन सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 एफएम।
12: जी हम पचपरा से बोला जी बोलते नहीं।
16: हाँ हाँ
12: जी नमस्ते।
16: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन 90.4 FM में।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: मैं ज्योति साहू मधुसूदन से बोल रही हूँ।
0: जी कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: और क्या कर रही हैं अभी?
1: अभी हम खाना बना रहे हैं अभी।
0: अच्छा, नाश्ता हो गया है?
1: हाँ नाश्ता हो गया, खाना बना रहे हैं।
0: चलिए सब तो बढ़िया है। और गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए।
1: गाना गाना वो सुनना चाहती हूँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: एक बार और बोल दीजिए।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी मेरे पति को। हाँ
0: अच्छा चलिए, तब तो बढ़िया है। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। वेलकम।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।

0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: हाँ जी मैम, नमस्ते।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4 असम में।
7: मैम आपको गाना सुनना है।
6: अच्छा, नाम बता दीजिए।
7: सुबह कानी हजियापुर ऐसी
6: जी। तो कौन सा गाना सुनना है जी आपको?
7: मैम भरत तिवारी के एक गाना सुना दी।
6: कौन सा?
7: भरत तिवारी पे कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए।
6: चलिए, और गाना किसी को सुनाना भी है?
7: मैम आपको और अपने घर वालों को अच्छी रेडियो बहुत बजेगा मैम गाना,
6: कल या फिर आज सुनने को मिलेगा
7: शाम में। आपका नाम क्या है?
6: मेरा नाम
7: हाँ?
6: मेरा भारती है।
7: सोनू मैम नहीं,
6: वो भी है। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस दीदी, हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, बरसात नहीं हो रही है अभी फिलहाल में, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं।
0: अच्छा,
1: आपके आपके यहाँ पर कैसा मौसम है?
0: मेरे यहाँ भी मौसम अभी ठीक है।
1: बरसात हुई है क्या आपके उधर?
0: हाँ हुआ था शाम के टाइम में थोड़ा सा।
1: नहीं इधर तो नहीं हुआ, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं, अभी पानी गिरा नहीं अभी तक। खाना माना हो गया आपका?
0: जी मेरा हो गया, आपका हो गया?
1: नहीं अभी नहीं हुआ मेरा। जी
0: जी, कौन सा गाना सुनिएगा बता दीजिए।
1: मेरा जो पिक्चर नाम है आंटी नंबर वन।
0: और गाना कौन सा है?
1: गाना भी सुना दीजिए, आई है 1-2 तिवारी।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी जी, सबसे पहले आपको और गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा जी कगवासा से।
0: जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: धन्यवाद मैडम।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
10: Now pick your phone up.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 104 FM।
13: हाँ, किस्मत बोल रहे हैं।
12: हाँ जी, कैसे हैं आप?
13: हाँ, सब ठीक हुआ, ठीक बोला ना।
12: हाँ,
13: तो बारिश हो तो रहा आज तो नहीं क्या हो गया, ठीक हुआ दिन, ठंडा दिन हुआ ना।
12: हाँ, आज दिन ठंडा बाबे, अतनी बारिश नहीं क्या हो खता अच्छा
13: जुम्मा है तो ठीक हो बाबू, सुना दियो कवाली बढ़िया।
12: अच्छा, कौन सा कवाली सुने?
13: तू अपना मुँह से सुना दू, अच्छा होला।
12: चलिए ठीक बाबा,
13: ठीक
12: गाना प्ले करते नहीं, सुनते नहीं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
13: ठीक।

0: हेलो हेलो
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार
0: कुमार सिंगापुर।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी ठीक हैं।
0: अच्छा, और बारिश हो रहा है गोपालगंज में?
1: नहीं अभी तो नहीं हो रहा है, हुआ था रात को, अभी ठीक है।
0: अच्छा, अभी मौसम सही हो रहा है ना?
1: मौसम अभी सही हो रहा है, ठंडा ठंडा रह रहा है अभी।
0: हम लोग का तो धान बोरिंग से रोपा गया था, बारिश हुआ, भगवान जी मेहरबान है एकदम।
1: चलिए कोई नहीं, दोबारा नहीं पटाना पड़ेगा।
0: हाँ दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ,
0: और बताइए मैम, खाना वाना हो गया?
1: हाँ मेरा तो हो गया, आप अभी तो हो गया क्या?
0: नहीं, हम लोग का 2 घंटा अभी टाइम है लंच होने में, अभी 11 बजे। नाश्ता तो सुबह में करके आते हैं।
1: चलिए तब तो बढ़िया है। तो
0: आज हमको गाना खेसारी लाल का गाना सुनवाइएगा, नया सॉन्ग।
1: खेसारी लाल का नया सॉन्ग कौन सा?
0: वो वाला गाना नहीं है वो फलाली लगाएंगा जिसे करिए, अरे वो सब छोड़ दीजिए, कौन सिंह का हमको सुनवा दीजिए, अब कबो जर भी खैला पर बेअसर होला।
1: अच्छा
0: यही कौन सिंह का सुनवा दीजिएगा, ठीक है? नया खेसारी लाल का है गाना, लेकिन हमको याद नहीं है ना।
1: कोई नहीं, अगली बार वो बता दीजिएगा, इस बार ये कौन सिंह का सॉन्ग बजा देंगे।
0: यही कौन सिंह के व्यवसाय सुनवा दीजिएगा।
1: जी। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
1: जी,
0: और जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सबसे।
1: चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए के साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: Jab phone din de bajte hai to kehte hai hello, hello, hello, hello, hello.
14: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhwar aur shukrawar ko subah subah 11 baje se call karke apne gaane ke farmaish ko record kara sakte hain. नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
16: जी हम जैन बनारस।
15: जी कैसे हैं आप?
16: बढ़िया है।
15: क्या हो रहा है अभी?
16: साड़िया में काम कर रहे हैं, पावर लूम।
15: तो बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है आज?
16: ये गाना है वो वाला, सारी दुनिया का जैसे एक है, उस तरह तू मेरी दिल एक है। कुमार सानू आवाज।
15: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
16: जी अब 10 लोग को सुनेंगे और अपने फैमिली के साथ सुनेंगे।
15: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो न्यूजीलैंड ट्रांसफॉर्म में।
0: जी मैं गांधीनगर से अजय पकवान बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हालचाल है आपका?
0: जी बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: जी गाना सुनाइए हमको, सौदागर दिल ले ले दिन दे।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: सौदागर फिल्म का है, सौदागर दिल ले ले दिन दे।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट की है?
0: लड्डू सा है, व्यासा है, राजेशा है, साहिल जी है, इंतजार जी है, दीपक जी है, शंकर भाई है और रेडियो सुनने वाले सभी को।
1: तो चलिए फिर आपसे गाना शुरू करते हैं, सुनते रहिए सबको। कौन रेडियो रंगीन ट्रांसफॉर्म।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
9: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029994911 पे।
9: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में
7: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
10: हवा महल।

हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको रोमेश जोशी की लिखी नाटिका सुनवा रहे हैं बिना बांह का स्वेटर। निर्देशक हैं विजय दीपक छिब्बर।

0: अरे लगता तो अस्पताल जैसा ही है, बाहर बोर्ड पे भी तो लिखा था डॉक्टर विपिन बिहारी।
1: अरे इस अस्पताल में कोई है?
2: कहिए क्या बात है?
0: डॉक्टर विपिन बिहारी कहाँ है?
2: अंदर है, आप बैठिए।
0: देर लगेगी क्या?
2: नहीं नहीं, आपका ही नंबर है।
0: थैंक यू।
2: एक मिनट, आपका ये स्वेटर का डिजाइन देखना है प्लीज।
0: देख लीजिए, आप भी देख लीजिए।
2: बहुत अच्छा डिजाइन है, तीन फंदे सीधे फिर दो फंदे उल्टे। जाइए जाइए, डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं।
0: अरे आपने तो रोका था।
2: हाँ, मगर वापस लौटते हुए मुझसे मिलकर जाइए।
0: मरम पट्टी आप ही करेंगे क्या?
2: नहीं, वो तो उधर होगी। मगर ये डिजाइन एक बार मैं फिर देखूंगी।
0: जी
3: यस
0: डॉक्टर साहब, आप तू ही है?
3: हाँ, मैं ही हूँ।
0: अरे
3: तू तो कमल है ना? देखा, भूला नहीं हूँ मैं तुम्हें। हाँ,
0: इतने बरस बाद।
3: हाँ, 10 साल हो गए, कॉलेज के बाद आज मिला है। कैसा है तू?
0: अरे ठीक।
3: अरे अरे अरे अरे
0: नहीं,
3: क्या हुआ क्या हुआ? चिंता मत कर, अभी ठीक हो जाएगा।
0: देख देख, ठीक कर, जल्दी ठीक कर, फटा जा रहा है।
3: हाँ, ये ले मेरे दोस्त, ये स्प्रे लगा, दर्द का।
0: हाँ यार, कुछ आराम आया।
3: हाँ, पर यार ये चोट लगी कैसे?
0: अरे बस ऐसे ही यार, ना पूछे तो अच्छा है।
3: भाभी ने बेलन मारा है क्या?
0: अरे यार, तेरे जैसी किस्मत मेरी नहीं है भाई।
3: क्यों क्यों क्यों, ऐसी क्या बात है?
0: शादी नहीं की तो तेरी भाभी के होने का सवाल ही नहीं।
3: अरे वाह, अरे वाह, बड़ा खुशकिस्मत है यार तू तो।
0: कुछ भी कह ले,
3: लेकिन ये फिर चोट कैसे लगी?
0: ये तो कॉलेज के दिनों की चोट है दोस्त।
3: मजाक कर रहा है यार तू।
0: नहीं विपिन, मजाक नहीं, पुरानी चोट है जो आज उभरी।
3: सच सच बता, क्या हुआ?
0: अच्छा सुन, तुझे याद है कॉलेज में मेरे पास कैसे बेहतरीन स्वेटर हुआ करते थे बिना भाग के?
3: हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। अरे तेरे स्वेटर देखकर कई बार बड़ी जलन होती थी मुझे।
0: मेरी बहनें और भाभियां हर साल बनाती थी मेरे लिए।
3: ये भी पता है, आगे बोल, उसका सिर की चोट से क्या संबंध है?
0: वही तो बता रहा हूँ यार, याद है अपनी क्लास में एक सोनल थी।
3: सोनल? हाँ सुना है, यहीं कहीं आसपास ही रहती है। फिर
0: उस दिन बहुत अच्छा बिना भाग का स्वेटर पहना था मैंने। हाँ, तो मैं क्लास की ओर जा रहा था।
3: अच्छा,
0: तभी मैंने सुना।
4: सुनिए सुनिए ना, अरे कमल सुनो तो सही।
0: आपने मुझे पुकारा?
4: यहाँ आसपास कोई और दिख रहा है क्या?
0: क्या है?
4: अरे पर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो?
0: घबरा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, तो मैं कहाँ घबरा रहा हूँ।
4: अच्छा नहीं घबरा रहे, तो ये इतने पसीने के छूट रहे हैं तुम्हारे
0: पसीने? वो स्टूपिड नहीं, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी। बोलो बोलो क्या है?
4: मुझे तुम्हारा ये स्वेटर देखना है।
0: ये?
4: हाँ यही।
0: उतार दूँ क्या?
4: नहीं नहीं, ऐसे ही देख लूंगी। अच्छा जरा उलट कर देखो।
0: किसे? मुझे?
4: तुम्हें नहीं, स्वेटर को। अंदर से देखना है, ऐसे। क्या हो रहा है?
0: अरे गुलगुली चल रही भाई।
4: ओफो, अच्छा ठीक है ठीक है, आराम से आराम से
0: आराम से आराम से देख लो।
4: कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है।
5: ये इधर से गया और
0: अरे कुछ नहीं, ये हनीकॉम की डिजाइन में थोड़ी सी फेरबदल कर दी है।
5: लग तो रहा है, पर कैसे की है फेरबदल?
0: जरा सी बात है, नीचे की लाइन से हर तीसरे फंदे को उल्टा करके उठा लो।
5: अरे हाँ, ओ समझ में आ गया।
0: और हनीकॉम डिजाइन में ऐसा नहीं होता, उसमें फंदा सीधा उठाया जाता है।
5: थैंक यू कमल।
0: वेलकम वेलकम। आप चलें?
5: कहाँ?
0: वो बाबा क्लास में।
5: ओहो, आज तो लेट हो गए, तुम भी ना स्वेटर दिखाने लगे।
0: मैं तो विपिन, ये थी मेरी और सोनल की पहली मुलाकात, पहली बातचीत।
3: किस्मत वाले हो यार, किसी लड़के से बात ही नहीं करती थी।
0: मुझसे तो खूब बातें की उसने,
3: पर उसका तेरे सर की चोट से क्या संबंध?
0: अरे उसी से तो है संबंध, वरना इतना दर्द नहीं होता।
3: अच्छा, अब दर्द कुछ कम हुआ ना?
0: हाँ, काफी कुछ कम हुआ। फिर दूसरे दिन मैं दूसरा स्वेटर पहन के गया बिना वहां का।
3: और उसने तुझे फिर से रोका?
0: हाँ।
5: हाय कमल।
0: हेलो, आई मीन हाय।
5: जरा नजदीक आओ।
0: क्या है?
5: और करीब आओ ना।
0: बोलो।
5: स्वेटर देखना है। बहुत सुंदर है।
0: तुमसे ज्यादा तो नहीं?
5: क्या कहा?
0: हाँ, वो मैंने कहा कि इस डिजाइन में बस उल्टे फंदों का कमाल है, है ना?
5: दो फंदे सीधे,
0: फिर दो फंदे उल्टे,
5: फिर तीसरे फंदे को
0: घुमाकर उठा लिया,
5: फिर नीचे की लाइन में गिराए गए फंदे को
0: उठाकर एक और फंदा बढ़ा लिया,
5: और ये जाली बन गई।
0: कैसा जाल बनाते हैं ये उठते गिरते फंदे भी,
5: हैरान कर देते हैं, है ना?
0: चलो कॉफी पीते हैं।
5: क्या?
0: चलो आई मीन कैंटीन में कॉफी पियेंगे।
5: कॉफी तो कैंटीन में ही पी जाती है ना। चलो चलते हैं, लेकिन एक शर्त पर।
0: क्या?
5: कॉफी के पैसे मैं दूंगी। हम चलो।
0: उस दिन हम दोनों ने कैंटीन में 1.5 घंटे बैठ

0: भागा, उसने फिर रुका।
1: अच्छा फिर
0: चौथे दिन में चौथा स्वेटर पहनकर गया बिना भागा, उसने फिर रोका।
1: अबे यार तेरे पास कुल कितने स्वेटर थे बिना बाह के?
0: 8।
1: तो ठीक है, मान लिया 8 दिन में तूने सोनल को 8 स्वेटर दिखा दिए बिना बाह के। फिर
0: मेरे पास बस 8 ही स्वेटर थे
1: बिना बाह के। गनीमत है 8 ही थे। अरे फिर ये चोट?
0: अरे यार वही तो बता रहा हूँ, तू मुझे बोलने ही नहीं देता।
1: अब क्या कहूँ तुझसे? अच्छा बोल बोल बोल बोल।
0: उसके बाद रोज हम एक दूसरे को देखते पर कोई बात नहीं होती।
1: क्यों?
0: मेरे पास 9 स्वेटर नहीं था ना बिना बाह का।
1: फिर
0: गर्मी आ गई,
1: फिर
0: एग्जाम आ गए, और फिर छुट्टियां।
2: डॉक्टर
3: क्या हुआ शीला, क्या बात है?
2: आपको देर लगेगी क्या बाहर, कुछ मरीज?
3: हाँ कुछ देर लग जाएगी।
2: तो फिर उन मरीजों को
3: ऐसा करो डॉक्टर वर्मा के पास भेज दो।
2: ठीक है।
4: नमस्ते जी।
2: नमस्ते।
4: स्वेटर की डिजाइन समझ में आ गई आपको?
2: नहीं ना, आप थोड़ी देर के लिए इसे उतार कर मुझे दे दीजिए ना।
3: हाँ कमल, मिस शीला को भी नई नई डिजाइन के स्वेटर बनाने का बड़ा शौक है।
4: अच्छा अच्छा, मैं अभी उतार देता हूँ। ये लो।
2: थैंक यू, मैं बाहर रिसेप्शन पर हूँ, आप जाते समय ले लीजिएगा प्लीज।
4: नो प्रॉब्लम।
3: अमित चली गई, अब उधर मत देख।
4: अच्छी है मिस शीला। शादी नहीं हुई ना?
3: शादी तो नहीं हुई, पर तू अभी जल्दी से बता दे ये चोट कैसे लगी।
0: हाँ बताता हूँ, वो सोनल आज फिर मिल गई थी।
3: हैं? कहाँ?
0: मैं खड़ा था टैक्सी के इंतजार में।
3: अच्छा, अब फिर?
0: एकाएक देखा सामने से सोनल चली आ रही है
3: पैदल।
0: हाँ, 2 बच्चे, 1 लड़का 1 लड़की।
2: हाँ तो किस तरह गुजर गए पूरे 10 साल?
0: कट गए बिजनेस जमाते जमाते।
2: स्वेटर तो तुमने आज भी
0: अच्छा डिजाइन है ना?
2: देखो जरा।
0: जरूर देखो, पलट कर भी देख लो।
2: क्यों, अब गुदगुदी नहीं होती क्या?
0: सुनो सोनल। इस तरह तुम उलट पुलट कर स्वेटर देखती हो।
2: हाँ तो?
0: कभी सोचा है इस स्वेटर के नीचे एक धड़कता हुआ दिल है?
2: सोचा है, पता है मुझे।
0: इतने करीब आकर स्वेटर के डिजाइन देखती हो और
2: तो क्या हुआ कमल?
0: कभी धड़कता हुआ दिल कुछ कर बैठा तो?
2: कोई डर नहीं, कुछ नहीं करेगा।
0: क्या कहा?
2: हाँ कमल, जब कुछ होना था तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा?
0: क्या?
3: लेकिन कमल अब भी तूने बताया नहीं ये ये ये चोट कैसे लगी?
0: वो ऐसे लगी यार कि जैसे ही सोनल गई मुझे उसकी बात का मतलब समझ में आया, बस अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने वहां पास ही जो बिजली का खंबा था
3: उससे अपना सर फोड़ लिया।
0: और क्या भी किया जा सकता था मेरे यार, जिंदगी भर का सबक मिल गया मुझे। अच्छा विपिन, अब चलता हूँ।
3: 1-2 दिन में आ जाना, मैं देखकर फिर दवा दे दूंगा।
0: हाँ अब तो आता ही रहूंगा दोस्त।
3: और वो अपना स्वेटर ले जाना मत भूलना बिना बाह वाला।
5: मिस शीला।
0: मैंने कहा मिस शीला।
2: जी। ओह लीजिए आपका स्वेटर।
0: देख लिया डिजाइन?
2: हाँ देख भी लिया और समझ भी लिया, पर
0: आप चाहे तो और देख ले, मैं रुक जाता हूँ।
2: नहीं, वो मुझे लंच पर जाना है।
0: अगर मैं कहूँ आप लंच मेरे साथ ले तो?
2: आपके साथ? मगर वो
0: अरे उस डॉक्टर विपिन बिहारी की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा।
2: चलिए
0: चलिए।
2: मगर आपको ऐसा क्यों लगा?
0: कैसा?
2: कि मैं आपके लंच का प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगी?
0: वो ऐसे कि हम दोनों की रुचियां एक जैसी हैं।
2: और
0: आज सुबह मुझे एक सबक मिला है।
2: कौन सा?
0: वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तो बस इतना समझ लो शीला, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहूंगा।
2: ऐसा क्या?
0: तो चले
2: चलते हैं, पहले अपने स्वेटर तो पहन लो बिना वहां वाला।

0: जरूर।
1: बिना बाह का स्वेटर।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
7: बोलबम, हर हर महादेव।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9556 97644।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
9: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: उन्होंने कहा कि परिसीमन का कार्य पूरा होते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
1: पंचायत चुनाव को टालने के लिए कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है, अभी बस निर्णय हुआ है कि परिसीमन कराया जाएगा पंचायतों का 2011 की जनगणना के आधार पर, और उसके उपरांत फिर चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन का काम पहले करना है, अगर समय पर परिसीमन का काम हो पाता है तो पूरी कोशिश की जाएगी कि चुनाव भी सही समय पर कराए जाए।
0: श्री प्रकाश ने कहा कि परिसीमन का कार्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय तैयारी पूरी कर ली गई है।
1: जो भी काम परिसीमन से संबंधित हो, तमाम काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जाता है। अभी जो बिहार पंचायत राज अधिनियम में जो मानक तय किए गए हैं, 5000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, साथ ही साथ जिला परिषद के लिए 50,000 की जनसंख्या पे किया जाता है, ग्राम पंचायत के लिए 7,000 और ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 500 की जनसंख्या पे क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि पिछले परिसीमन का काम 1991 की जनगणना के हिसाब से हुआ था, तो इन 20 वर्षों में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इस कारण से परिसीमन करने की जरूरत है। तो परिसीमन का काम किया जाएगा, परिसीमन के उपरांत निर्वाचन आयोग के द्वारा आरक्षण के रोस्टर के ऊपर काम किया जाएगा और फाइनली फिर उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे।
0: योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सभी विधायकों और विधान पार्षदों को पत्र लिखकर विकास कार्यों में तेजी लाने की अपील की है। श्री कुशवाहा ने विधानमंडल सदस्यों से क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत अपने अपने जिले की योजनाओं को लेकर अनुशंसा प्रस्ताव भेजने को कहा है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और सभी जिलों को राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सदस्यों से अनुशंसा शीघ्र प्राप्त होने पर योजनाओं का क्रियान्वयन भी जल्द हो सकेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर जोर पकड़ रहा है। एनडीए, राजद और जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी, नेता और समर्थक लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। एनडीए की ओर से आज कदमकुआं स्थित साहित्य सम्मेलन परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज पटना पहुंचने के बाद जनसंपर्क में जुट गए। श्री नवीन पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उपचुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष श्री नवीन मंडल अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में पार्टी के कई नेता प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं। इधर जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर चुनाव चिन्ह स्कूल बस्ता मिलने के बाद ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में लग गए हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने दावा किया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बदले जाने के बावजूद जनता का समर्थन एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के काम पर भरोसा है।
2: देखिए, प्रत्याशी बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता जो माने नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है ना, उनके गारंटी पर विश्वास करती है। और ये बांकीपुर विधानसभा हमारे जो केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माने नितिन नवीन जी, उनका ये जमीन है और ये इनका जमीन उतना मजबूत है कि इन पर किसी के भी दाल गलने वाली नहीं है। अगर कोई दावा करते हैं तो ये हवा हवा ही दावा करते हैं।
0: लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन संगठन विस्तार के लिए पार्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव मैदान में उतरेगी। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि गठबंधन के स्वरूप और अन्य विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है।
3: देखिए, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं एनडीए का एक मजबूत हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर है। हम लोगों ने देश भर के चुनाव एक साथ लड़े, जहां से मैंने बिहार में 5 सीटों पे मैंने चुनाव लड़ा। बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ा। मैं जब पार्टी के विस्तार की सोच रखता हूं, मेरे नेता, मेरे पिता झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार को हमेशा एक सांस में उन्होंने देखने का काम किया। ऐसे में दर्शाता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और आज की तारीख में जब मेरी पार्टी के विस्तार की सोच रखती है, अलग अलग राज्यों में जब हम लोग अपने फुटप्रिंट्स को गहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। भारत का आर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज दोपहर 12:05 पर प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का भी निमंत्रण दिया है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैज्ञानिक और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती शक्ति का सशक्त प्रमाण है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के खिलाड़ियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि अनुशासन और समर्पण कामयाबी की कुंजी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 26 जुलाई को आयोजित होने वाली एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। मधेपुरा जिले के गमहरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जीवजपुर में जागीर टोला उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मध्यान्ह भोजन खाने से लगभग 35 बच्चे बीमार पड़ गए। इन सभी को सिंहेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 3 नए ग्रिड की स्थापना की जाएगी। स्थानीय सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक संजय जायसवाल ने बताया कि ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को सहमति मिली है।
3: आज यहाँ विद्युत उपभोक्ताओं को लेकर के बैठक थी। हम लोगों ने 3 नए ग्रिड के लिए भी अनुशंसा किया है और इसके साथ जिले के सभी किसानों से हम लोग अनुरोध करेंगे कि कृपया कर किसान अपने बिजली के लिए आवेदन करें। कुल मिला के पूरे चंपारण में केवल 700 लोगों का आवेदन पेंडिंग है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं हम बिजली लेने में पीछे हो रहे हैं। कृपया कर सभी लोग कंप्यूटर पर अप्लाई करें जिससे कि उनको मिल सके।
0: राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिले में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में पटना, अरवल, बक्सर, भोजपुर, किशनगंज, नालंदा, रोहतास और शेखपुरा जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है।
4: राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के सभी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, नालंदा, पटना, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बेगूसराय जिले के विभिन्न स्कूलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अब तक 1,00,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। मुंगेर जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर टीबी की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार इस दौरान संभावित लक्षणों वाले 30 लोगों की पहचान की गई। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बिशनपुर मकिया स्थित खिरोई नदी में डूबने से एक 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। कैमूर जिले में कुदरा और भभुआ थाने की पुलिस ने एक चार पहिया वाहन और पिकअप से 1283 लीटर शराब जब्त की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मद्य निषेध विभाग की टीम ने मुंगेर जिले के नवागढ़ी एनएच के पास जांच के दौरान एक पिकअप वाहन से 24 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार हेली टूरिज्म सेवा आम लोगों के लिए आज से शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जॉयराइड का शुभारंभ किया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, पंचायत चुनाव टाला नहीं गया, नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे चुनाव। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर बढ़ा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए प्रत्याशी के लिए किया जनसंपर्क। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिले में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: ठक ठक
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
0: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
8: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
11: तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
9: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे।
9: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में
7: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
10: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रमझिम को सुन रहे हैं।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलरबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
4: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
5: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में सहायक कुल सचिव का पद रिक्त है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। शैक्षिक योग्यता, पात्रता और अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की वेबसाइट www.iitism.ac.in। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से 15 अगस्त 2026 को रात्रि 11:59 तक भेजे जा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ अपने विभिन्न महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट प्रोटेक्शन प्लांट पैथोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्लोरिकल्चर एवं लैंडस्केपिंग फ्लावर ब्रीडिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रूट साइंस फ्रूट ब्रीडिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिक साइंस प्लांट फिजियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस वेजिटेबल ब्रीडिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस वेजिटेबल प्रोडक्शन, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल साइंस एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये सभी पद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए हैं। इसके अतिरिक्त कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए ये पद रिक्त हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड बिजनेस मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड बिजनेस मैनेजमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्लांट ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्लांट ऑपरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी केमिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में जो पद उपलब्ध हैं वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्म मशीनरी एवं पावर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोसेसिंग एवं फूड इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अतिरिक्त कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तथा कॉलेज ऑफ शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी विभिन्न पद रिक्त हैं। वेतनमान रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अकादमिक लेवल 10 में 57,700 रुपए। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 18 से 24 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.svpuat.edu.in।
4: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
13: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
13: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
14: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
0: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
0: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
13: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा।
14: बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी, और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
15: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस. टेररिज्म धंधा है. इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी. अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे. सेम सिचुएशन वैली में.
14: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है.
16: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा. संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा. शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. अभय जोधपुरकर और वैकुम विजय लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा. तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा. कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा. कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा. अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
14: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है. श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है. इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है. संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी. मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है. गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है.
17: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया. घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है. अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी. अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
14: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है. उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है. यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ. इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद के निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है. एक रिपोर्ट.
18: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
14: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
19: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री
20: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
19: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
14: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंता बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमरीका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
21: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
22: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
23: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
24: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
23: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
21: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
25: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
25: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
26: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
27: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
28: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
29: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
28: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
30: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, शिक्षा विभाग के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक, कुचायकोट प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, वकालत खाना में पुस्तकालय के वार्षिक उत्सव पर पहुंचे हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ट्रैफिक पुलिस ने फ्री में हेलमेट पहनाकर लोगों को किया जागरूक, और बाबा धाम के लिए अब थावे से चलेगी स्पेशल ट्रेन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं, नामांकन अभियान, आदर्श विद्यालयों की तैयारियां और निजी विद्यालयों की मान्यता तथा RTE फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम और विद्यालय भवन निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने जिले के 14 चयनित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की बात कही। इन विद्यालयों के उद्घाटन को लेकर भी सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने कुचायकोट प्रखंड कार्यालय का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड कार्यालय के विभिन्न शाखा कार्यालयों का भ्रमण कर संचालित योजनाओं, कार्यालय व्यवस्था तथा आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने निर्माणाधीन नए प्रखंड कार्यालय भवन का भी जायजा लिया। उन्होंने भवन निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के संबंध में अधिकारियों एवं कार्य एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, गुणवत्ता और मानकों का पूरा ख्याल रखते हुए कार्य को समय से पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिया। गोपालगंज शहर के सिविल कोर्ट परिसर में स्थित स्वर्गीय देवधारी गिरी विधि पुस्तकालय के आज वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश और जिला पदाधिकारी तथा सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी सभी गणमान्य अधिवक्ता गणों ने स्वर्गीय देवधारी गिरी के चित्र पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुई। इस अवसर पर अतिथियों ने स्वर्गीय देवधारी गिरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए कहा कि उन्होंने विधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया तथा समाज में न्याय, नैतिकता एवं विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनके आदर्श और विचारों को आज भी अधिवक्ताओं एवं नई पीढ़ी के लोगों को प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। गोपालगंज ट्रैफिक पुलिस ने आज नो हेलमेट नो राइड का संदेश देते हुए वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट पहनाकर उन्हें जागरूक किया। सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक किया। शहर के अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक DSP ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को निःशुल्क हेलमेट पहनाकर सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। यातायात DSP ने कहा कि हेलमेट नहीं पहनने से सड़क हादसों में जान जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लोगों को हर हाल में हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील की गई। अभियान में ट्रैफिक पुलिस के सभी पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। जिला कृषि कार्यालय गोपालगंज के प्रशिक्षण हॉल में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के सौजन्य से शारदीय यानी खरीफ मौसम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कृषकों को फसल मौसम के बारे में जानकारी एवं तकनीकी ज्ञान वर्धन के लिए कृषक वैज्ञानिक वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया के वैज्ञानिकों एवं कृषि संबद्ध विभाग के पदाधिकारियों ने किसानों के समस्याओं का निराकरण किया। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अरहर फसल प्रत्यक्षण तथा मेड़ पर अरहर लगाने हेतु कृषकों को बताया गया। पशुपालन पदाधिकारी और अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा पशु टीकाकरण, गलाघोंटू बीमारी और अन्य पशुओं से संबंधित होने वाली बीमारियों के संदर्भ में भी किसानों को जानकारी दी गई और उससे बचने के उपाय सुझाए गए। श्रावण महीने में गोपालगंज यात्रियों को बाबा धाम जाने के लिए अब काफी सुविधा होगी। रेलवे प्रशासन ने थामे गोपालगंज होकर देवघर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को इसका काफी लाभ मिलेगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने श्रावणी मेला के दौरान बढ़नी देवघर बढ़नी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 29 जुलाई से 30 अगस्त तक थावे और गोपालगंज होकर प्रतिदिन चलेगी। इसके गोपालगंज के श्रद्धालुओं को देवघर जाने के लिए काफी सुविधा मिलेगी और सीधी रेल सेवा के माध्यम से लोग देवघर बाबा के दरबार में जाकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार अलग अलग थाना की पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पेट्रोलिंग करती है और इन पुलिस कर्मियों की पेट्रोलिंग का निरीक्षण करने के लिए सुपर पेट्रोलिंग के तहत वरिष्ठ पदाधिकारी भी इलाकों का दौरा करते हैं। इसी कड़ी में जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कर्मियों का जांच पड़ताल किया और सुपर पेट्रोलिंग के तहत उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुचका गांव थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी बबलू शाह को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मुचका गांव थाना क्षेत्र के पीड़रा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। साथ ही इसी कांड में एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हथुआ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 360 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। साथ ही एक बोलेरो गाड़ी को भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बोलेरो गाड़ी से शराब की तस्करी हो रही है। इसी बीच पुलिस ने सूचना के अनुसार शराब तस्करों का पीछा किया। शराब तस्कर गाड़ी लेकर भागने लगा और भागते हुए बताया जा रहा है कि पुलिस से पकड़े जाने के डर से शराब तस्कर ने अपने गाड़ी को सुलौनी पुल के पास खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, बोलेरो गाड़ी को जब्त किया गया और उसके अंदर से 360 लीटर शराब मिली है। अब इसमें वाहन चालक और वाहन के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर भोरे थाना की पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे उत्तर प्रदेश के सोनू कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहा था, तभी पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने इस आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के रहने वाले दीपक कुमार पांडे को भोरे थाना की पुलिस ने बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर 2021 में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, तभी से यह फरार चल रहा था। पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस ने सिवान से ही इसे गिरफ्तार कर लिया और आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सिधौलिया थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास

0: पुलिस ने इसके कार और शराब को जब्त कर इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जादवपुर थाना की पुलिस ने मंगलपुर गंडक नदी के पास छापेमारी करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर दो नाव से 664 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब जब्त किया है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्कर नाव तथा शराब छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने नाव और शराब को जब्त कर लिया है। तस्करों की पहचान करने में जुटी हुई है। व्यवहार न्यायालय के पुराने भवन के सभागार में एनआई एक्ट 138 वादों के निष्पादन के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। एनआई एक्ट 138 के वादों के निष्पादन को लेकर एक पीठ का गठन किया गया था। बताया जा रहा है कि पीठ के न्यायिक पदाधिकारी राजा शाह और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के द्वारा कुल 8 एनआई एक्ट 138 के वादों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल समझौता राशि 28,57,630 रुपए बताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शिक्षा विभाग के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक। कुचायकोट प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। वकालत खाना में पुस्तकालय के वार्षिक उत्सव पर पहुंचे हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ट्रैफिक पुलिस ने फ्री में हेलमेट पहनाकर लोगों को किया जागरूक। और बाबा धाम के लिए अब थामे से चलेगी स्पेशल ट्रेन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
6: बोलबम, हर हर महादेव।
7: सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे, ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया दिल्ली जाके पैसा।

0: का फायदा।
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: रियाज रेट्रो।
4: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, किशोर कुमार, हुए चार। साथ जोड़ दीजिए गीता दत्त, मुकेश, तो हुए छह। और सबके साथ एक सुनहरे धागे की तरह हमेशा मन्ना दे। कितने हो गए? सात। करेक्ट, द मैग्निफिसेंट सेवन ऑफ हिंदी फिल्म प्लेबैक। इंद्रधनुष के सात रंग, आवाज में जिनकी सात समुंदर की गहराई, हमारी फिल्मों के गले में मानो चमकता सोने का सात लहरिया हार। पर फिर इनके आगे पीछे इर्द गिर्द और कौन सी आवाजें हैं? मीनाकारी की तरह, चांदी की डोर की तरह, जेमस्टोन्स के जैसे, जो संगीत की सजावट को और सुंदर बनाते रहे अपने योगदान से। एक ऐसे हैं जिनकी सालगिरह निकल गई जब मैं सीजन 3 और सीजन 4 के बीच में ब्रेक पर थी, और एक हैं हमारे आज के एपिसोड की मल्लिका, बर्थडे 28 जनवरी जिनका। मैं आपके साथ रिया, और आज आप आवाज पहचानिए पहले, और फिर मैं पहचान कराती हूँ।

ये किसने गीत छेड़ा? बिल्कुल सही लिखा शैलेंद्र जी ने, संगीत बर्मन दादा, फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें। सूरत आंखें तो ठीक है, पर आवाजें किसकी? मुकेश जी की आवाज तो आप पहचान गए, पर साथ उनके लता जी, पर आवाज में हस्क ज्यादा है। आशा जी, पर आवाज तो उनसे सॉफ्ट है। 28 जनवरी इनका जन्मदिन। ये है हमारी अदर वॉइसेस में से ही एक नायाब हीरा, सुमन कल्याणपुर। रियाज रेट्रो। मैं आपके साथ रिया, और उम्मीद है आप अभी तक मुंह फुलाकर नहीं बैठे हैं क्योंकि एपिसोड जियो रिस्ट्रिक्टेड था। अतुल, शर्वनी, रवि, साजिद, राज, अमर, रूबिया, संगीता और न जाने कितने और दोस्त जो मुझे पता है अभी भी नाराज होंगे। माफ कर दो यार, कभी इंडिया आना तो एपिसोड 2 सुन लेना। अब बाहर रहते हो तो कुछ चीजों का कभी कभी इंतजार करना पड़ता है ना। होली की गुजिया, दिवाली के दिए, रिश्तेदारों की किलकारियां, देश का चांद, देश की बरसात, साथ में मेरे एक दो एपिसोड भी शामिल कर लो ना यार। अब आज की थीम भी तो आपकी डिमांड ही रही है ना, कई बार दी अदर वॉइसेस, खासकर सुमन कल्याणपुर। कितनी बार चाहा है आपने। पैदाइश इनकी 1937 की ढाका में, जो अब ऑफ कोर्स इंडिया में नहीं बांग्लादेश में है। सुमन के छुटपन में ही परिवार मुंबई शिफ्ट हुआ और शुरू हुई उनकी म्यूजिकल तालीम। पंडित केशव राव भोले की ये शिष्या पेंटिंग में भी रुचि रखती थी। लता जी के साथ सिमिलैरिटी आवाज की तो इतनी जबरदस्त मानी जाती थी इनकी, और ऑल इंडिया रेडियो वगैरह में नाम अनाउंस करने का भी रिवाज नहीं था तब। तो कई बार प्रोड्यूसर्स अगर लता मंगेशकर की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर अगर लता जी की किसी मेल प्लेबैक सिंगर से अनबन चल रही हो, जो कि अक्सर होता था, तो फिर प्रोड्यूसर्स सुमन कल्याणपुर को बुला लेते थे गाने के लिए। क्वाइट अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टेपनी बनने से कहीं ज्यादा टैलेंट था इनमें। मैं रिया और फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं से ये रफी साहब के साथ ड्यूएट उनका मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। खयाम और मजरू साहब का बनाया गीत, इसमें वो लता जी से ज्यादा आशा जी के स्टाइल के करीब ज्यादा आती हैं। बट अगेन, व्हाई डू दिस टू हर? ये ना लता है ना आशा है, ये तो सुमन कल्याणपुर हैं।

खा गए ना आप धोखा। रफी साहब की आवाज में अ टिपिकल जैज बेस्ड क्लब सॉन्ग ऑफ द 60s, आरडी स्टाइल। हालांकि इसमें म्यूजिक शंकर जयकिशन का है। शम्मी कपूर के लटके झटके, मुमताज की शेक स्टाइल डांसिंग, बिग ब्रास ट्रम्पेट्स, तो बस आपने भी मान लिया कि फीमेल प्लेबैक आशा भोसले का ही है। है क्या, आवाज पर ध्यान दिया कभी डांस करते वक्त? क्योंकि इस सुपरहिट में मुमताज के लिए प्लेबैक सुमन कल्याणपुर ने किया था। इस फिल्म में राजश्री भी थी और शायद ये दूसरी ही फिल्म थी उनकी। एंड समहाउ इस फिल्म में और कोई फीमेल प्लेबैक का गाना है ही नहीं। क्या राजश्री और मुमताज दोनों तब लगभग नए थे इसलिए ये कोइंसिडेंस हुआ? लता या आशा जी की आवाज नहीं मिली उन्हें, क्या पता। ये ऐसा हो सकता है कि जेन्युइनली इस फिल्म में और कोई फीमेल गाने की जरूरत ही नहीं थी। उड़ती खबरें आती हैं और उन्हें हम वापस उड़ा देते हैं क्योंकि इतने करीब से देखने की जरूरत नहीं। रेट्रो की दुनिया सीपिया टोन्स में ही रहे, शार्प स्क्रैचेस, वॉट्स एंड मोल्स ना ही दिखे तो अच्छा।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
6: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
8: रियाज रेट्रो।
9: मैं आपके साथ रिया, ट्विटर हैंडल @MissRiaMukherjee, MSRIYAMUKHERJEE। वैसे इस हैंडल को टैग करना होता है अगर कोई ट्वीट मेरी नजर में लाना हो तो। आप बहुत स्वीट हैं, कहते हैं मुझे कि ट्विटर हाल फिलहाल में ही ज्वाइन किया है RR फैमिली से जुड़ने के लिए, फिर मेरी नजर हफ्तों महीनों बाद एक्सीडेंटली आपके किसी पुराने ट्वीट पर पड़ती है जिसमें मैं टैग्ड ही नहीं हूँ। अब टैग नहीं करेंगे तो मुझ तक वो बात पहुंचेगी कैसे? चलो, ट्विटर लेसन ओवर। अदर वॉइसेस की बात हो रही है आज यहाँ, और 10th जनवरी को उन्हीं में से एक बहुत बड़े पिलर की सालगिरह थी, कट्टसरी जोसेफ येसुदास। कुछ 80,000 के ऊपर गाने रिकॉर्ड किए हैं शायद इन्होंने, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित, नेशनल अवार्ड 8 बार जीत चुके हैं, फिल्म फेयर अवार्ड 5 बार। अपने होम स्टेट केरला के अंदर तो कितने अवार्ड और सम्मान जीत चुके हैं इसका कोई हिसाब ही नहीं। सच कहूं तो उन्हें अदर वॉइसेस एपिसोड में शामिल करने में ही शर्म आ रही है, और अगर ये बात सच है कि हिंदी फिल्मों में वो अदर वॉइस में ही एक रहे तो फिर ये हिंदी सिनेमा की कमी है, किसी एंगल से उनकी नहीं। उनके सुर में हम थोड़ा और सुर मिलाते तो हमारी फिल्मों का भला ही होता।

0: सुमन कल्याणपुर के जन्मदिन का बहाना लिया 28 जनवरी और निकल पड़े हम उन आवाजों के पीछे जो प्लेबैक हेजमनी के बाहर थे, आपके लता किशोर आशा रफी के दायरों के बाहर। ये सुदास के विशाल प्रतिभा की भी छोटी सी झलक देख ली और रादर सुन ली। उनकी सालगिरह थी 10 जनवरी। गाने आपने सुने पहले चिच्चोर से, तू जो मेरे सुर में, साथ उनके हेमलता, बोल और संगीत रविंद्र जैन, और फिर द स्टनिंग का करूं सजनी फिल्म स्वामी, संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार अमित खन्ना।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065575।
8: रियाज रेट्रो।
0: मैं रिया, और आपने देखा होगा शायद कि आज के एपिसोड के थीम अदर वॉइसेस के साथ नंबर 1 भी लगा हुआ है। वो इसलिए नहीं कि मैं अगले ही हफ्ते इसका कोई पार्ट 2 करने वाली हूँ, पर इसलिए क्योंकि मुझे लगता है अदर वॉइसेस पर आगे जाकर बड़े सारे एपिसोड्स हो सकते हैं। बहुत कमाल की, बहुत अनोखी आवाजें आती रही, गाती रही हिंदी सिनेमा में, कुछ जरी के धागे की तरह हमेशा मौजूद, पर अपनी अलग पहचान बनाए, जैसे येसुदास या भूपिंदर या फिर मन्ना दे भी, जैसा कहा। कुछ थोड़े और कम, कभी कभार सुनाई देने वाले, आते जाते से, तो कुछ और जो एक या दो गीत गाकर ही लुप्त हो गए। अपने अलग अलग अंदाज में, अपने यकथा हुनर से ये हिंदी फिल्म प्लेबैक की दुनिया में चमक और वैरायटी लाते रहे, जो वरना बड़ी मोनोटोनस हो जाती। और इसलिए मुझे लगता है जो सिलसिला आप ही के हजार बार कहने से आज शुरू किया है, इसके और बड़े सारे पड़ाव होंगे आगे जाकर। इनफैक्ट आई रियलाइज्ड कि इस सजेशन के इतनी बार आने के बावजूद मैं शायद डर अभी तक इस बात से रही थी कि कैसे समाएगा एक एपिसोड में ऐसा थीम। फिर लगा, किसने सर की कसम दी है भाई कि एक ही एपिसोड में करना है, ना मैं कहीं जा रही हूँ और ना आप, होपफुली। तो बार बार लौटेंगे हम, जब मन और मौका होगा, इन अलग आवाजों की तरफ, है ना।

0: रेशमा और कब्बन मिर्जा, दो कमाल की आवाजें, इंटेंस, रस्टिक, रियल और इतने सेंशुअल की स्पिरिचुअल लगने लगे। दे ब्लर्ड द लाइंस बिटवीन द टू ट्रूली। पिछले एपिसोड में जब सुभाष घई की बात की थी तब हीरो के इस गाने को चलाते चलाते रह गई, लगा हमेशा यही चलाती हूँ तो उसमें कुछ और चला दिया। पर देखो अगले ही एपिसोड में लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी का ये मास्टरपीस लंबी जुदाई आ ही गया। और उससे पहले रजिया सुल्तान से आई जंजीर की झनकार, जानिसार अख्तर और खयाम का कलाम, और गायक का नाम फिर से बता दूं कब्बन मिर्जा। If an old well-smoked hookah on a cold winter evening in the deserts of Rajasthan could have a human voice, it would be his. कब्बन मिर्जा के बारे में ज्यादा तो कुछ मालूम नहीं है मुझे, पर इतना जानती हूँ कि वो रेडियो प्रेजेंटर थे। छाया गीत सुनने वालों को कब्बन मिर्जा का आदाब। क्या बात है। रेशमा जी के बारे में तो कहीं और ज्यादा जानते हैं हम। पाकिस्तान में सितारा इम्तियाज से नवाजी गईं ये लोक गीत की गायिका पैदाइश से राजस्थान की बंजारन है, और वो नोमैडिक क्वालिटी हमेशा उनके गीतों में रही।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: रियाज रेट्रो।
0: आपके साथ मैं रिया। और ओपी नैयर के एपिसोड के बाद जयश्री ने ये ट्वीट किया था, व्हाइल वी हैव मेनी ब्यूटीफुल आशा लता ड्यूएट्स, ओपी नैयर ऑल्सो गेव अस वन आशा उषा मंगेशकर ड्यूएट। देखो बिजली डोले बिन बादल की फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ। अनादर जेम फ्रॉम आशा उषा इसका है तरसाए जियरा फ्रॉम चित्रलेखा। जयश्री, उषा मंगेशकर सच में हैं एक और नायाब अदर वॉइस, और मंगेशकर बहनों में से ही एक हैं वो तो, जिन्होंने कम गाया कभी कभार गाया पर हुनर में तो कोई कमी नहीं थी। मैंने उषा जी से फोन पर दो चार बार बात की है। सीजन वन में याद है लता जी का टेलीफोनिक इंटरव्यू है, तो उस इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए उषा जी से गुजरी थी मैं। वो साथ ही रहती है ना दोनों। उषा मंगेशकर की सालगिरह भी पिछले ही महीने थी, 15th December। तो फिर जयश्री ऐसा क्यों ना करें कि आपके बताए दोनों गीत सुन लें। दोनों गीतों में मुझे एक और बात बेहतरीन लगती है, ओपी नैयर और रोशन जी के संगीत के अलावा, और वो ये है कि इन दोनों प्योर हिंदी नियर संस्कृत गीत के गीतकार थे दो उर्दू के माहिर, मजरू सुल्तानपुरी और साहिर लुधियानवी।

रहे हैं कि जब जब आपने मुझे अदर वॉइसेस पर एपिसोड करने का सुझाव दिया है, मैं क्यों टोपी पकड़कर भाग खड़ी होती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज मैं पूरा एपिसोड सुमन कल्याणपुर या येसुदास जी पर भी कर सकती थी और वो भी बहुत खूबसूरत होते, पर ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे ये गायक कुछ सुनने वालों के बहुत अजीज हैं, वैसे ही मुमकिन हो कि सबकी टेस्ट्स के साथ इनकी आवाज ना मैच करे। दूसरी वजह ये कि अदर वॉइसेस के थीम को इंट्रोड्यूस करने की बड़ी इच्छा रही है काफी वक्त से, तो आज मौका मिल गया। इस कॉन्सेप्ट पर मुझे लगता है हम बार बार लौटेंगे। जनवरी की ये दो नायाब ब्रैकेट्स, शुरुआत में येसुदास 10th जैन और महीने के आखिर में सुमन कल्याणपुर 28th जनवरी, इन दोनों के हाथों को पकड़कर हमने फाइनली सीजन 4 में इस थीम का उद्घाटन कर ही दिया। एक बहुत ही कमाल के गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको आज, और सुमन कल्याणपुर का गाया शायद मेरा पर्सनली सबसे पसंदीदा गाना, फिल्म नूर महल, जानी बाबू कवाल का संगीत और सबा अफगानी के बोल। ये नाम भी इतने अनयूजुअल और अनफेमिलियर कि इनका नाम लेना तो बनता था अदर वॉइसेस वाले एपिसोड में। मैं थी आपके साथ रिया, और जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, आपके अंदर, आपकी शख्सियत में भी, आपकी बुलंद जानी पहचानी दुनिया के सामने रखी आवाज के अलावा भी है दूसरी आवाजें। Always keep that other voice inside you alive. That's the voice that lets you dare to dream, dare to love.

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना रामोल गातादर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा विजय अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: हेलो हेलो, क्या बोला था?

भगवान।

0: और सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: हमार बजरंगी पुलिस बन गई ले।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80

0: 8190294911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: मैं पूर्वी चंपारण बिहार के परराज बाबा सोमेश्वर नाथ से बोल रहा हूँ, जूना साजी।
1: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: बढ़िया है, फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में हूँ।
1: तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: दूल्हा गंगा पार के गाना सुना दीजिए। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल भी अब तेरे दुआरी है भोलेनाथ।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
2: जी जी जी, फर्स्ट तो है रामविलास कुशवाहा जी कीर्तपुर बगहा से, वैसे धर्मेंद्र यादव जी और दिनेश साजी, उमेश साजी और भरत साजी, रवि कुमार साजी और रेडियो सुनने वाले सब साथी लोगों को सुना दूंगा प्रणाम।
1: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं संतरे सबके साथ रेडियो 90.4 FM। प्रणाम।

0: जी बहुत
1: हेलो।
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम।
0: क्या हाल चाल है?
1: अच्छा है, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। नाम बता दीजिए अपना।
1: ईशा कुमारी।
0: कहाँ से?
1: हम गोपालगंज पोस्ट ऑफिस जो है वहीं पे।
0: तो कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए, आज बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है।
1: ये लो बता, ये मेरा भाई बताएगा मैम।
0: जी दे दीजिए।
1: हेलो।
0: हाँ बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते।
1: एक मुझे गाना सुनना
0: बता दीजिए।
1: बवली में पैसा। हिंदी
0: हिंदी सॉन्ग है। गाने के और कुछ लाइन याद है? थोड़ा बहुत सुना दीजिए ना।
1: बगली में पैसा पैसा के करी लाख
0: अच्छा तो आप बता दीजिए, मतलब मैं नहीं सुन पाऊंगी ना तो नहीं बजा पाऊंगी।
1: अच्छा ये बोल रहे हैं ना, बगली में पैसा पैसा के करी लाख, ये वाला गाना।
0: अच्छा और गाना किसी को सुनाना है?
1: सबसे पहले आपको, मेरे भाई बहन है, मम्मी है और रेडियो टीवी में जितने भी दोस्त हैं उन सबको।
0: चलिए ठीक है, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम।
2: नमस्ते
3: मैम। नमस्ते
2: जी, मैं प्रदीप सामी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
3: क्या हाल चाल है आपका?
2: ठीक है जी, अपना बताइए।
3: हमारा भी ठीक है।
2: मुझे एक सॉन्ग सुनना था।
3: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
2: ये दुल्हा गंगा पार का सॉन्ग सुनना है, टाइटल सॉन्ग।
3: अच्छा,
2: इतना बता दो ये दुल्हा गंगा पार के ये गाना सॉन्ग सुनना।
3: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
2: जी, अंकुश कुमार और प्रिंस कुमार और अमरजीत साहनी और जितने रिमझिम रेडियो में सुन रहे हैं सारे।
3: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम।
3: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: कैसी है मैम?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी हम भी अच्छे हैं। बारिश उधर हुआ है रात को?
1: बारिश तो पूरी रात हुई है।
0: हम लोगो भी यहाँ बारिश बहुत हुआ है, चारों तरफ सादा ही सादा दिख रहा है, पानी ही पानी।
1: चलिए, इसी का तो सब कोई को बेसब्री से इंतजार।
0: मैम गाना सुनवा दीजिए, एक तो
1: बता दीजिए।
0: गाने का बोल है, बादल यू गरजता है, डर कुछ ऐसा लग रहा है।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: डेडिकेट आप सुनिएगा, जितने रेडियो रिमझिम होता है सभी सुनेंगे।
1: ओके
0: जी मैम,
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM। वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone can be bajti hai, to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: जी नमस्कार मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम। मैं
6: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
6: तो आज कौन सा सॉन्ग सुनना है?
5: आज सुनवा दीजिएगा ना कजरे की हार।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
5: मैं रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहता
6: हूँ। ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्ते नमस्कार दिवस सोनी सर कैसे हैं?
0: नमस्ते मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं तो आप लोग मस्त मिलता है सकास रहता हूँ। मैं रेडियो फैन मोहम्मद खान ना, बताइए सब क्या हो रहा है? ब्रेकफास्ट हो गया?
0: ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, और आपका?
1: मेरा भी बहुत पहले हो गया है।
0: अच्छा,
1: और सर सुनाइए मौसम कैसा है अपने यहाँ का?
0: यहाँ का मौसम अभी ठीक है।
1: सुने की बारिश हो रही है?
0: हाँ बारिश हो रहा है, लेकिन कभी कभी, लेकिन मौसम ठंडा है।
1: यहाँ पे तो काफी गर्मी है दुबई में, 45 क्रॉस कर गया है, कभी कभी 50 भी चला जा रहा है। तो मुझे सॉन्ग सुना दीजिएगा दयावान मूवी के।
0: और सॉन्ग कौन सा है
1: आज फिर सुन के क्या रहा है?
0: अच्छा तो चलिए और
1: आपके साथ ये सुनाना चाहते आपके साथ निशा भारती कार खातून सागुप्ता फिर दो और लिस्नर को और अनिल भाई को भी छोटपुर वाले अनिल भाई उनको भी सुनवा दीजिएगा।
0: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सब कुछ रेडियो रंजन 90.4।
1: थैंक यू।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: नमस्ते मैडम
3: जी। नमस्ते।
2: हेलो।
3: हाँ जी
2: मैडम, मुझे गीत सुनना है
3: जी। नाम बता दीजिए।
2: नमस्कार, से बोल रहा हूँ।
3: और कौन सा गीत सुनना है आपको?
2: दिल्ली आने का डोला जो मार के लिए।
3: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
2: मैं भी हमारे श्रोता जाएंगे, सभी लोगों के लिए।
3: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मैं मोहम्मद अंसारी जयपुर से
1: जी,
0: और मैं कई बार लगा चुका हूँ और रिकॉर्ड करा भी चुका हूँ। मेरा सॉन्ग चलता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है?
1: ऐसा तो नहीं है, सभी का कॉल इसलिए होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपका प्रॉब्लम हो जाएगा।
0: ऐसा है कि मुझे गाना सुनना है, गाना खेसारी लाल की आवाज में चलवा दीजिएगा।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: ई प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: एक बार और बोल दीजिएगा।
0: ई प्यार काल परसों के भइल ना रहे।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: सुनाना है, सब दिन मामा है, अजरुद्दीन भाई है, और समीर भाई है, और सोहन भाई है, अजीम भाई है, सबको सुनाना है, और ये गाना सुनना चाहते हैं सब हम।
1: जी बिल्कुल, प्ले करेंगे, प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

0: हेलो माय चॉइस के शो में आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते।
2: नमस्ते,
1: क्या हाल हुआ?
2: हमारे तो ठीक बार बताइए, अपन रोबा कैसे बने?
1: ठीक बनी भारती जी
2: ना
1: पहले तो ना तो नहीं
2: हूँ, बुधवार के दिन छुट्टी पे रहो।
1: अच्छा अच्छा, मनोरमा जी रहने वो दिन गाना सुना दी हमसे, न भंगिया पिसाइए गणेश के पापा न घर जाता नो, ये गाना बाजी।
2: और ये गाना क्यों सुनेबो करे हम
1: पूरा आदमी जुड़ल बस सब सुनी।
2: जी चले फिर ठीक बात है, गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
1: जी हम पचपरा से बोला जी बोलते नहीं।
2: हाँ हाँ
1: जी नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: मैं ज्योति साहू मधुसूदनगढ़ से बोल रही हूँ।
0: जी, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: और क्या कर रही हैं अभी?
1: अभी हम खाना बना रहे हैं अभी।
0: अच्छा, नाश्ता हो गया है?
1: हाँ, नाश्ता हुआ है, खाना बना रहे हैं।
0: चलिए, सब तो बढ़िया है। और गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए।
1: गाना गाना वो सुनना चाहती हूँ मैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: एक बार और बोल दीजिए।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी, मेरे पति को।
0: अच्छा, चलिए, सब तो बढ़िया है। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone can be bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हाँ जी मैम, नमस्ते।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगी 90.4 FM में।
6: मैम आपको गाना सुनना है।
5: अच्छा, नाम बता दीजिए।
6: सोलह कानी हजियापुर से
5: जी। तो कौन सा गाना सुनना है जी आपको?
6: मैम भरत तिवारी के एक गाना सुना दी।
5: कौन सा?
6: भरत तिवारी पे कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए।
5: चलिए, और गाना किसी को सुनाना भी है?
6: मैम आपको और अपने घर वालों को बजेगा मैम गाना
5: कल या फिर आज सुनने को मिलेगा
6: शाम में। सबका नाम क्या है?
5: मेरा नाम
6: हा?
5: मेरा भारती है।
6: सोनी मैम नहीं
5: वो भी है। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस दीदी, हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, बरसात नहीं हो रही है अभी फिलहाल में, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं।
0: अच्छा,
1: आपके आपके यहाँ पर कैसा मौसम है?
0: मेरे यहाँ भी मौसम अभी ठीक है।
1: बरसात हुई है क्या आपके उधर?
0: हाँ हुआ था शाम के टाइम में थोड़ा सा।
1: नहीं इधर तो नहीं हुआ, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं, अभी पानी गिरा नहीं अभी तक। खाना माना हो गया आपका?
0: जी मेरा हो गया, आपका हो गया?
1: नहीं अभी नहीं हुआ मेरा। जी
0: जी, कौन सा गाना सुनिएगा बता दीजिए।
1: मेरा जी पिक्चर नाम है आंटी नंबर वन।
0: और गाना कौन सा है?
1: गाना भी सुना दीजिए, आई है आंटी तिवारी।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी जी, सबसे पहले आपको और गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझाजी सुखभाषा से।
0: जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: धन्यवाद मैडम।
0: वेलकम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494111। जी हाँ, 80029494111। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ सब ठीक हुआ, तुम ठीक बोलो ना।
5: हाँ
6: तो बारिश हो तो रहा आज तो नहीं क्या हो गया, ठीक बात दिन है, ठंडा दिन बा ना।
5: हाँ आज दिन ठंडा बावे, अतनी बारिश नहीं के हो खता आज हो
6: बावे। जुम्मा है तो ठीक हो बाबू, सुना दियो कव्वाली बढ़िया।
5: अच्छा कौन सा कव्वाली सुने?
6: तू अपना मुँह से सुना दू, अच्छा होला।
5: चलिए ठीक बाबू,
6: ठीक
5: गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ठीक

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार,
0: आप कुमार सिंहतापुर।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी ठीक हैं।
0: अच्छा, और बारिश वारिश हो रहा है गोपालगंज में?
1: नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, हुआ था रात को, अभी ठीक है।
0: अच्छा, अभी मौसम सही हो रहा है ना?
1: मौसम अभी सही हो रहा है, ठंडा ठंडा रह रहा है अभी।
0: हम लोग का तो धान बोरिंग से रोपा गया, तब बारिश हुआ, धान भी मेहरबान है एकदम।
1: चलिए कोई नहीं, दोबारा नहीं पटाना पड़ेगा।
0: हाँ, दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ
0: और बताइए मैम, खाना वाना हो गया?
1: हाँ, मेरा तो हो गया, आपका भी तो हो गया क्या?
0: नहीं, हम लोग का 2 घंटा अभी टाइम है लंच होने में, अभी 11 बजे आएगा। नाश्ता तो सुबह में करके आते हैं।
1: चलिए, तब तो बढ़िया है। तो बताइए,
0: आज हमको गाना, आज गाना खेसारी लाल का गाना सुनवाइएगा, नया सॉन्ग।
1: खेसारी लाल का नया सॉन्ग कौन सा?
0: वो वाला गाना नहीं है वो, लाली लगाएंगा जिसे करिए। अरे वो सब छोड़ दीजिए, कौन सी कम सुनवा दीजिए, अब कबो जहर भी खैला कर बे असर खेला।
1: अच्छा,
0: यही कौन सिंह सुनवा दीजिएगा, ठीक है? नया नया खेसारी लाल का है गाना, लेकिन हमको याद नहीं है ना।
1: कोई नहीं, अगली बार वो बता दीजिएगा, इस बार ये पवन सिंह का सॉन्ग बजा दूंगी।
0: यही पवन सिंह के व्यवसायी सुनवा दीजिएगा।
1: जी जी
0: जी।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
1: जी,
0: आज जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सबसे।
1: चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए के साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।

आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। Now pick it up.

0: Pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up. Pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन रिंग दे बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: जी हम जैन बनारस।
4: जी कैसे हैं आप?
5: बढ़िया है।
4: क्या हो रहा है अभी?
5: साड़ियों में काम कर रहे हैं, पावर लूम।
4: तो बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है आप?
5: ये गाना है वो वाला, सारी दुनिया का जैसे एक है, उस तरह तू मेरी बिंदु एक है। कुमार सानू आवाज।
4: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
5: जी हम दोस्त लोग को और अपने फैमिली के साथ सुनेंगे।
4: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
0: जी मैं गांधीनगर से अजय पकवान बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हालचाल है आपका?
0: जी बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: जी गाना सुनाइए हमको, सौदागर दिल ले ले दिल दे कर।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: सौदागर फिल्म का है, सौदागर दिल ले ले दिल दे कर।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट की है?
0: लड्डू शाह है, व्यास शाह है, राजेश शाह है, साहिल जी है, इंतजार जी है, दीपक जी है, शंकर भाई है और रेडियो सुनने वाले सभी को।
1: तो चलिए फिर आपसे गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 94.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusregional.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला, रंग नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला, ऐसन तीर है जे दिल के पार हो जाला।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों
1: पर। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: चित्रगुप्त सिद्ध चालीसा प्रस्तुत करते हैं KK सिंह KK रिकॉर्ड मास्टर।

आज विक्रम संवत 2083 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि दिनांक 19 जुलाई 2026 दिन रविवार के सुप्रभात रेडियो रिमझिम परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 5:19 पे होगा तथा सूर्यास्त 6:42 पे होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजर अंदाज रखो। तो श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5 बज चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रातःकालीन सभा भक्तिमय गीतों के साथ।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।